एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 अगस्त सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सादर वंदे, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द

0: सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सिंथुल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय आज के चिंतन का

0: रोशनी, उजाला या प्रकाश, तीनों शब्दों का भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधेरे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं, मेरा, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और धरती पर उजाला होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।
1: रोशनी विषय पर आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोता आप सुनिए भक्ति।

अंजू तेली के स्वर में अभी आपने भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अब सुनते हैं सतीश नारायण रेड्डी के स्वर में अगली भक्ति रचना।

एफएम बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

निषादराज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। कलाकार हैं हितेंद्र आचार्य और साथी।

7:20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे मोहन जोशी से वार्ता। वार्ता का विषय है नीम का वृक्ष, वरिष्ठ नागरिक।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर प्रसारित होगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से ही अनुप्रसारित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा वारा सभी किसान भाइयों ने बोने ने वीना बेनो राम राम राम राम। देखो बेनो, आज खेत्र नो काम काज है ने अपने तेरे किसान भाई बेने अपने ने तो हर रोज खेत्र नो जी काम काज है करव पड़े, टेम ने अनुसार करव है। देखो बेनो, हर रोज खेती वाड़ी काम काज ने वाते अपने कर, अपने तो खेती थे के जुड़े थक है, नो खेती नो जी काम है, घर नो काम है, ई बेने ने हर रोज करोज पड़े। पर बेनो, आज आपने बात कर रक्षाबंधन नो त्योहार है, ई भी अपने ने मनावो। भाई बहन नो त्योहार है ने एक भाई बहन ने अटूट स्नेह ने विश्वास ने एक बीजा थे की आ रक्षा करवानो संकल्प नो एक प्रतीक है रक्षाबंधन बहनो। जी अपने सांस्कृतिक मंच ने आधार थकी अपने बात कर बहनों, देख जी भी वार त्योहार आवे ये अपने हसी खुशी धूमधाम थकी मली जुली ने मनावो जोगे, क्योंकि जी भी त्योहार आवे भाई रक्षाबंधन हो, दिवाली हो या पसे भाई दूज हो, हर त्योहार है। रक्षाबंधन ने अपने बात करो, रक्षाबंधन एक त्योहार है तो बहनों राखी महज एक धागोस नहीं बल्कि एक भाई बहनों बीच में स्नेह विश्वास ने डोर है, आदर सम्मान अटूट भरोसो इनो प्रतीक रक्षाबंधन है। पर वह ई परिवार ने एक जुड़ाव, परिवार ने सम्मान, एक बीजा ने हाथे रही ने मदद करवी, आ रिश्ता ने एक मिठास बढ़ावे। भाई अपनी बहन ने जीवन भर रक्षा ने संकल्प ले। बहनों, रक्षाबंधन नो पर्व है, अपने भाई ने रक्षा बल लंबी उम्र बदले, जी भाई इन्हें हरू प्रार्थना करे एक रक्षा सूत्र बांधे। बहनों, रक्षा सूत्र एक धागोस नती। देखो बहनों, रक्षाबंधन बांधे वचन ले, जी भी नशो भाई करी रथका है, अना हरू नशा थे की दूर राखवानो एक संकल्प ले, एक वचन ले, अनमोल रिश्ता हरू नई राह दिखावा हरू एक वचन जरूर ले। बेना देखो, आपड़े किसान भाई है, बेने है, ग्रामीण बेने है, शहरी बेने है, और पूरा भारत में आपड़े रक्षाबंधन नो त्योहार है, एक पवित्र बंधन। अपने एक बहन है, राखी बांधते समय भाई थे की वचन ले, अपने जी खुद नी शहर ने उज्जवल भविष्य हरू हर तरह थे की जी नशो जी भाई करी रहते का ये हमेशा हरू सोड़ी दे। ये आ राखी बांधे ने बहन जरूर वचन ले भाई थे की, ताकि एक भाई ने जिंदगी है अंधेरा थे की दूर थी सके। त्योहार है ये हसी खुशी मनावानो है तो किमने बहनो, आना मौका माते एक बहन है ई हर भाई थे की वचन जरूर ले कि जी भी भाई नशो करी रहे का है ई नशा थे की दूर रहे। देखो, नशा थे की दूर रहवा थे अपने घर परिवार सोरा बोरा सब खुशहाल परिवार बने ने रहे। देखो बिनो, रक्षाबंधन पर आप त्याली शका, किम के भाई कई वक्त भाई पास नाराज भी थी जाए तो प्यार थे की भाई ने समझाड़े की भाई आपनो जीवन अमारा यानी एक बहन हरू कितलू जरूरी है। परिवार ने वास्ते याद अलाड़े कि आप अपनो जी स्वास्थ्य ई पूरा परिवार हरू कितलू जरूरी है। परिवार ने खुशी है तमार थे की जुड़ी ले गिफ्ट आले अच्छी हार्लो वगैरह आले।

रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। रवैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।
4: माला

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए इस लोक भजन के साथ ही आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे मोहन जोशी से वार्ता। वार्ता का विषय है नीम का वृक्ष, वरिष्ठ नागरिक।
1: वार्ता का विषय है नीम का वृक्ष, वरिष्ठ नागरिक। गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा पिता की याद से भी पहले खड़ा है। सघन छाया में भी बिछी है खाट कितनी, इसकी जड़ों पर बैठकर ही मैंने पढ़ा है। कवि नीम का पेड़ कविता को प्रतीक रूप में वृद्ध जनों के अनुभव, संस्मरण, आत्मीयता तथा संवेदनाओं की याद दिलाता है। वरिष्ठ जन वह पेड़ हैं जो भले ही फल नहीं देते पर उनकी घनी छाया प्रेम और जीवन के अनुभव प्रदान करती है। वे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। समाज के लिए वृद्धों के अनुभव पथ प्रदर्शक, संस्कारों और सभ्यता के वाहक व संस्कृति के रक्षक होते हैं। समाज में विविध विधाओं, कार्यों एवं स्थलों पर सेवा एवं अनुभवों का संरक्षित कर नव समाज को अर्पित करते हैं। वे कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर नव युवाओं का सहयोग करते हैं। वे अद्भुत संरक्षक हैं जो बौद्धिक व मानसिक बल से अपने पूर्वजों व अनुभवियों से प्राप्त अनुभव का ज्ञान संग्रहण कर पूंजी या धरोहर के रूप में अपनी नव पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। जीवन का अनुभव हो जिसके पास, हर मंजिल पूर्ण करती है उनकी आस। आज कनिष्ठ जन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। युवा समाज की लहर में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के मध्य खाई का अनुभव किया जा रहा है। इससे कर्तव्यनिष्ठा, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं का संवहन रुक सा जाया। विकास और सभ्यता के नाम पर युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुक कर रहे हैं। उनमें वरिष्ठ जनों की शारीरिक अक्षमता, आर्थिक दृष्टि से कमजोरी तथा संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति उनके उदासीनता से व्यक्तिवाद भारी पड़ रहा है। व्यावसायिक दृष्टि से व्यक्ति परिवार से दूर हो गया है। इससे परिवार व समाज का महत्व कम हो गया है। भावात्मक समस्या के कारण प्रेम, सहयोग एवं सम्मान की भावना आज कम हो गई है। वरिष्ठ जन एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त युवा बेरोजगारी के कारण अपने वरिष्ठ जनों पर ही भार बनकर रह गए हैं। समाज के विचलन के कारण वरिष्ठ जन असहाय होते जा रहे हैं। पारिवारिक सौहार्दता, मधुर भाषिता, सकारात्मकता एवं सहयोग से वंचित होते जा रहे हैं। यह भारत की नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बन गई है। इसी कारण कई समाजसेवी संस्थाओं एवं सरकारी प्रयासों से वृद्धाश्रम, वृद्ध क्लब, सामाजिक संस्थाओं, सरकार द्वारा सम्मान, सरकारी सुविधाएं, भौतिक एवं आर्थिक सहयोग के कारण मार्गदर्शक के रूप में वृद्धों की अहम भूमिका सिद्ध होती जा रही है। वरिष्ठ जनों की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस

पर्व पर वृद्धों के लिए एवं वृद्धों के द्वारा विशेष कार्यक्रम, चर्चाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मान किया जाता है। भारत में वृद्धों के हित के कार्य और सम्मान बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान, मंडल स्तर पर महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर तथा वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान बांसवाड़ा स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है, जिसके अनुसार असहाय, निर्धन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनन संतान एवं उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार द्वारा भी वृद्ध कल्याण सुविधाओं के लिए नियम और योजनाएं बनाई है, और इसमें प्रमुख योजना है पहली पेंशन योजना, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना है, जिसमें बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से ऊपर के सदस्य को 500 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र व 3 पासपोर्ट साइज फोटो संबंधित विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य स्तर पर राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें राजस्थान मूल के 55 वर्षीय या उससे अधिक महिला एवं 58 वर्षीय पुरुष जिसके परिवार में कोई राजकीय सेवा का सदस्य न हो 500 रुपया तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 750 रुपया प्रति माह पेंशन दी जा सकती है। वृद्धजनों की विधिक सेवा सहायता समिति द्वारा निशुल्क कानून सहायता एवं गरीब वृद्धजनों को न्यायालयों में निशुल्क पैरवी की जाती, बसों, रेलों, हवाई जहाजों में बैठने में प्राथमिकता तथा किराए में भी रियायत यात्रा की सुविधा दी गई है। वृद्धों की सुविधा के अनुसार उन्हें साक्षर होने की आवश्यकता पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व डे केयर सेंटर पर निशुल्क सेवा प्राप्त होती है। निसहाय, निराश्रित, निसंतान जन एवं संतान द्वारा पीड़ित वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में आवास एवं भोजन की सुविधा होती है। वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती है। वृद्धाश्रम के लिए निशुल्क 1000 वर्ग फीट भूमि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है तथा उस पर निर्माण कार्य के लिए 30 लाख रुपयों के अनुदान का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों को 2,50,000 रुपया तक वार्षिक तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5,00,000 रुपया वार्षिक आय पर आयकर में छूट दी जाती है। अस्पतालों, बैंकों, डाकघरों, बसों एवं रेल काउंटरों पर लंबी कतार होने पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हित और सुविधाओं के लिए बांसवाड़ा नगर में 22 जनवरी 2012 को वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान बांसवाड़ा की स्थापना की गई है। यह राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान से संबद्ध है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा की पहल पर श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा पुराना नगर परिषद भवन रांची तलाई बांसवाड़ा में एक कक्ष आवंटित किया जा चुका है। अब संस्थान सदस्यों के द्वारा बैठक की व्यवस्था, टीवी, समाचार पत्रों एवं धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकों की व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है, ताकि निराश्रित एवं अन्य वृद्धजनों के अपना समय धूप प्यास सहकर बाहर गुजारने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय संस्थान कक्ष में गुजार सकते हैं। शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सकों एवं कंपाउंडरों की निःशुल्क सेवाओं का भी एक दिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। नव युवकों से निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक नव पीढ़ी के नीम के पेड़ की तरह जरूर हैं। वे हमें कड़वे अवश्य लगते हैं, परंतु उनकी सघन छाया में अनुभव, संस्मरण, आत्मीयता, संवेदनाओं, कर्तव्यनिष्ठा, सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं की निधि छिपी पड़ी है। इसका आप

0: अधिकतम उपयोग कर उन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर अब एक नवीन राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ताकि आप और वृद्ध जन के मध्य एक पारस्परिक प्रेम, सहयोग और अपनत्व की भावना पैदा हो सके। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत मोहन जोशी से वार्ता। वार्ता का विषय था नीम का वृक्ष, वरिष्ठ नागरिक। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने, शैलेंद्र के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गीत, आवाजें मुकेश और आरती मुखर्जी की। शकील बदायूं क्षमा कीजिए, शकील अहमद ने इसे लिखा है और आनंदा शंकर का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और इस समय इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। दिल ही तो है इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और तर्ज बनाई है रोशन ने।

आज हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि है। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी, ऐसी भावुकता थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके गाए गीत आज भी उतने ही ताजा और अपने से लगते हैं। आज हम उन्हीं के अमर गीतों को याद कर रहे हैं और आइए इसी के साथ सुनते हैं आस का पंछी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

रूठी रहो मैं मनाता।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

दुनिया ना माने इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, मदन मोहन का संगीत। और साथियों बता दें आपको कि आज आप सुन रहे थे मुकेश की पुण्यतिथि पर उन्हीं के गाए कुछ हमेशा सुने जाने वाले पसंद किए जाने वाले नगमे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली तनू।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफार्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है।

0: काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-98-51-31-68-07 और 977-97-09-10-7500। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00-86-18-51-42-84-905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि

0: प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही

0: समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का स्नेहिल अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम के तहत हम बात कर रहे हैं जीवन के उस स्वर्णिम अध्याय के बारे में, जिसमें समय अपनी सबसे सुंदर कविता लिखता है। ना कोई फिक्र, ना ही कोई आपाधापी, जहां खुशियों के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी खुशियों में सिमटी एक बड़ी सी दुनिया। जी हां श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बचपन की। बारिश की पहली बूंदे चेहरे पर पड़ती थी तो मन मयूर बनकर नाच उठता था। कागज की एक छोटी सी नाव में पूरा समंदर समा जाता। बचपन हमारे जीवन का वह स्वर्णिम प्रहर है जिसकी आभा उम्र के साथ भले ही धुंधली पड़ जाए, किंतु यादें हृदय के आकाश पर सदैव टिमटिमाती रहती है। अब नहीं महल है वो जो रेत में बनाए थे, अब नहीं पतंग है वो जो शोक से उड़ाए थे, अब नहीं जहाज है वो और ना ही वो नाव है कागजों से खेलने को जो कभी बनाए थे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, बचपन जीवन की एक अवस्था नहीं, यादों का उजला आकाश है, जहां आज भी हमारी मासूम हंसी की चांदनी बिखरी है। कभी मिट्टी के घरोंदे हमारा महल हुआ करते थे, कंचे हमारी दौलत, गिल्ली डंडा सितोलिया हमारा खेल, और दोस्तों की टोली हमारी पूरी दुनिया। तब ना मोबाइल की चमक थी, ना ही आभासी दुनिया का शोर। हमारी दुनिया हमारे खेल खिलौने सीमित थे, मगर उसमें अपनापन बहुत बड़ा था। विद्यालय की प्रार्थना, मित्रों की शरारतें, अध्यापकों की डांट और छुट्टी की घंटी, सब मिलकर जीवन की ऐसी मधुर धुन रचते जिसे हमारा मन उम्र भर हमारे भीतर सुनता रहता है। बचपन में जहां चाहा हंस लेते थे, जहां चाहा रो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई।

श्रोताओं, हमारा बचपन गुजरता है भाई बहनों की मीठी तकरार में, जहां प्रेम मुस्कान बनकर खिलता है, कभी नोकझोंक बनकर रूठता भी है और कभी बिना कुछ कहे ही मन की बात समझ लेता है। बचपन के उस आंगन को याद कीजिए जहां खिलौनों पर अधिकार के लिए लड़ाई होती थी, चॉकलेट आधी आधी बांटने की मजबूरी थी, एक दूसरे की शिकायतें, फिर थोड़ी देर बाद साथ बैठकर हंस रहे होते थे। कितना अद्भुत है ना यह रिश्ता। बहन घर की वह कोमल धुन है जो अपने साथ स्नेह और अपनापन लेकर आती है, और भाई वह विश्वास जिससे बहन को लगता है कि जीवन में कितना ही दुख क्यों न हो, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा है।

श्रोताओ, भाई बहन का अनमोल रिश्ता जिसकी जड़ें बचपन की मिट्टी में गहरी उतरती है और जिसकी शाखाएं उम्र के हर पड़ाव पर स्नेह की छाया देती है, इसमें अधिकार है, अपनापन है, शिकायतें हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसा प्रेम है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ता मौन संबल बनकर सामने आता है। भाई बहन की चुप्पी में छुपी हुई उदासी पढ़ लेता है और बहन भाई की आंखों में चिंता को पढ़ लेती है। कई बार शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कंधे पर रखा हाथ ही कह देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन मानो अपने प्रेम की एक अटूट डोर बांध देती है और भाई उस स्नेह को जीवन भर संजोने का संकल्प लेता है।

श्रोताओं, बचपन गुजरता नहीं, वह हमारे भीतर कहीं ठहर जाता है। उम्र बढ़ती जाती है, चेहरे पर समय की रेखाएं उभर आती है, लेकिन मन के किसी कोने में एक बच्चा सदैव जीवित रहता है, जो बारिश में भीगना चाहता है, तितलियों के पीछे दौड़ना चाहता है और बिना किसी कारण खिलखिलाकर हंसना चाहता है। जब हमारा मन थक जाता है, तब यही बचपन की यादें हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है।

श्रोताओं, बचपन जीवन की वह सुनहरी स्मृतियां हैं जिसमें हंसी की खनक, रिश्तों की गर्माहट, सपनों की उड़ान और मासूमियत की सुगंध बंधी रहती है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं समूह स्वरों में गाए राजस्थानी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR, बिना किसी स्पेस के NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राज्य के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हुई और प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के प्रति विशेष आकर्षण। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक जबकि बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम मतदाता हैं। इस बीच बीकानेर और फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव के मतदान कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में अब पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। वहीं जिले के अन्य 6 नगरीय निकायों के कुल 190 वार्डों में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को ही मतदान होगा। उधर सीकर जिले की फतेहपुर नगर पालिका में दूसरे चरण के लिए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को कराया जाएगा। आयोग ने यह बदलाव स्थानीय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों और परिस्थितियों को देखते हुए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के तहत मेरा युवा भारत माय भारत की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में हर जिले के 2 कॉलेजों में होगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। कार्यक्रम में युवाओं को खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय खेल हस्तियां भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू की है। रेल और सड़क परिवहन के जरिए प्याज प्रमुख खपत केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने 2026-27 के लिए 2,00,000 टन रबी प्याज खरीद का लक्ष्य रखा।

0: था जिसमें से करीब 1,21,000 टन प्याज खरीदा जा चुका है। इस बीच नासिक से दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए बफर स्टॉक का प्याज भेजा गया है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एनसीसीएफ, नेफेड, केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के जरिए इसकी खुदरा बिक्री की जाएगी। नेपाल में बाढ़ आपदा के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नेपाल पर गए राज्य के किसी भी व्यक्ति के संबंध में जानकारी या सहायता के लिए परिजन आपदा प्रबंधन विभाग के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के टोल फ्री नंबर 1070 पर और 112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दूरभाष नंबर भी जारी किए गए हैं। विभाग ने आईपी नंबर 2888 और ईमेल के माध्यम से भी ये सूचना देने की सुविधा उपलब्ध कराई है। गौरतलब है कि नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मृत्यु हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल बाढ़ हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। साथ ही हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हो रही है। इनमें 12, दौसा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले शामिल हैं। कृषि विभाग के अनुसार इन जिलों में डीबीटी पीओएस एप्लीकेशन का नया संस्करण लागू किया जा रहा है। इससे पहले 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि अब तक 1,00,000 से अधिक किसानों ने करीब 15,000 मीट्रिक टन यूरिया की ऑनलाइन बुकिंग की है। नई व्यवस्था में फार्मर आईडी के माध्यम से उर्वरक की बिक्री होगी और हर बिक्री डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास का रोडमैप तैयार कर कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। वे जयपुर के सांगानेर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 25,00,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
1: लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी माता बहनों का उत्थान कैसे हो, आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, अगर ये काम किया तो आज राजस्थान के अंदर 25,00,000 से अधिक मेरी लखपति दीदी ट्रेनिंग ले चुकी और 20,00,000 मेरे लखपति पहुंचे। वो कहती है मेरा जीवन ऐसा था मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मैं साल में 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 8,00,000 कमा रही हूँ। कई तो मेरी मैंने दीदी बन गई, ये भी मैं आपको कहना था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
0: भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व कल मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजारों में राखियों की खरीदारी तेज हो गई है। 12 जिले में रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं। वहीं सवाईमाधोपुर में बाजारों में राखी, नारियल, मिठाई, कपड़े और उपहारों की खरीदारी हो रही है। इधर राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ रोड, चांदपुल बाजार और छोटी चौपड़ सहित प्रमुख बाजारों में राखियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। इस बार पारंपरिक कुंदन, मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के साथ ब्रेसलेट स्टाइल की राखियां भी पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं दुकानदार भी राखियों की अच्छी बिक्री से खुश है।
2: डिमांड अच्छी है, इस बार ग्राहक हर तरह की राखियां ही ले रहे हैं। बिल्कुल, हर तरह की राखी ग्राहक पसंद कर रहा है। बेस्टेड वाली राखी इस बार अच्छी चल रही है। प्राइस सर मेरा सर रेंज है 10 रुपए से लेके आप

0: 250-300 तक की सारी रेंज मिलेगी।
1: आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि राखी आ रही है, हमारे साल का एक त्योहार होता है, तो मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ। अच्छी अच्छी राखियाँ खरीदी है मैंने अपने भाई के लिए, और मिठाइयाँ वगैरह खरीदेंगे हम, और कपड़े वगैरह खरीदेंगे, और राखी को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने भाई के साथ।
2: बहुत अच्छी है, अब क्या मेरी बेटी की शादी हुई है तो पहले राखी थोड़ा क्रेज है, तो मेरे घर पे मैंने सबको खाने भी बुलाया है और हम सब भी मेरे पियर जाएंगे खाना खाने।
3: इस बीच रक्षाबंधन पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी मुस्तैद है। जांच दलों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राज्य के 11 और जिलों में आज से उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था लागू हुई, और प्रदेश में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक, कुंदन मीनाकारी और जरदोजी वर्क वाली राखियों के प्रति विशेष आकर्षण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रही हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:30 होने को है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुँचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहां चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रही हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहां के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
2: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो

0: जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
1: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
1: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक
1: जी।
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
0: जी। जी तो बिमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी।

0: अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनके रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
1: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
1: हैं,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
0: जी,
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। मिलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
1: जी,
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल

0: जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
1: नाना जी, नाना जी।
2: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
4: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
4: ये लो, नानी जी भी आ गई।
5: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
5: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
5: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
4: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
2: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
5: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
5: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
3: ओ।
5: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
5: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
3: अच्छा।
5: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
3: अच्छी अर्थव्यवस्था।
5: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है।

0: हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: वही इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
1: जी नाना जी।
3: और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
4: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
8: तुलसी गौड़ा 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
10: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
11: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में हुनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था।

0: पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।

0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

उमंग। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूं, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं जी। मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीजों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी, जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी।
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविन्द्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था, उन दिनों बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी, तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी,
2: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल,
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहां पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था, ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं, और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे।

0: पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
0: फिर नेपाल फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहां तबादला हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहां पे इंडियन बेसिक स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहां बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहां से मेरे नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जोय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से
1: ही एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
0: जी, जी,
1: कुछ बताएं। बात है,
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्य, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपनी मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैंने बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई। और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरह।
0: हाँ, और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे। तो बेचने जाते थे, तो कुछ लोग मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा, नहीं मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो, पापा को

0: बताना, जब बड़े हुए तो सीधा मुंबई चले जाए, बॉम्बे गए चले जाए। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं कलकत्ता नहीं मैं बॉम्बे
1: ले जाएगा।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला। वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है। बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है। वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें।
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं जिंदगी

शमशीर में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में

0: गया।
1: बात चली नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं।

0: सकते हैं। तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो
1: कमाल,
0: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सब।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा में बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सरदार हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता की नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
0: जी।
1: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, मेरी जात, मेरा धर्म,
0: मेरा कल्चर,
1: मेरा शहर
0: जी,
1: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती है, मीडिया से भी आती है। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
0: जी,
1: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सरदार से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है, हमको इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
1: जी,
0: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें,
1: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलोसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा है ना
0: जी,
1: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो।
0: बिल्कुल।
1: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
0: सबसे अलग।
1: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि

0: आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की, 80s 90s से आप जुड़े हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान चल रहे हैं, क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी।
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं। और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है।

0: तो वेस्ट एंड ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं, वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती है, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
1: जी।
0: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है, तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे, तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
1: जी।
0: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में था श्रीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है, तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने, तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है, अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है, आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना, तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपके सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा,
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा,
0: हाँ, वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा,
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बढ़िया नाटक है लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी आप जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है, जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको

0: वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है। तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरी फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ये है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है। सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है। फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी। फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की, तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की मां, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही,
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और

0: काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं, बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन फुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलगाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मैंने नाटकों के बारे में, और मैंने जो नाटक किया था विरासत करके नाटक है वराचरी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बात भूल गया मैं, दो तीन साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, ए विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा।
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
0: अच्छा।
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट ने फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
0: जी।
1: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया, उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवेल है, नॉवेला हजार चौरसी की मां के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुम उनका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो। तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, तीन तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। ऐसे तीन तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ। उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है, वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो मां का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, इसीलिए वो हजार चौरसी जो नंबर है उसकी मां। इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, तो मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कैसे
0: फिर से जिया आपने उसे, उस माहौल को,
1: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई। महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
0: और थे। जया भादुड़ी जी और अनुपम खेर के साथ।
1: जी जी जी जी जी, तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
0: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
1: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
0: सुनते हैं गाना
1: जी।
2: बार बार हाँ, बोलो यार हाँ।

0: चलो यार हम
1: उंगली मुट्ठी
0: अपनी जीत हो
2: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
3: जिसको
2: दिल से चाहो तो और भी आगे भी हम बात करेंगे आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका
3: जी, जी, जी।
2: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे
3: जी, जी।
2: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया फिल्मों में आ गया अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं ऐसा कभी भावना नहीं आई
3: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था

0: अच्छा
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, औधा भी होगा
0: बिल्कुल
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा।
0: अच्छा।
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में जाकर स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: बस एक कलाकार एक आर्टिस्ट
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं और मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था।
0: अच्छा।
1: आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे, तो एक बहुत बढ़िया दौर था अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से, डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर भी हो गए है ना, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर
0: थे। आ रही थी। हाँ, बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था, सीरियस सिनेमा उस समय ना के
0: ना के बराबर था बिल्कुल।
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था, उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे या ऐलान करेंगे या परदेसी परदेसी उसमें
0: करेंगे।
1: जाएंगे
0: जी,
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता
0: जी।
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो रजनीगंधा सीरियस उस तरह का एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
0: इस तरह के रोल में।
1: जी जी जी जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे। आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया 1984 की माँ के 1999 में तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता।
0: हाँ।
1: ना मैं उसमें फिट होता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
0: जी।
1: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रेवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रेवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य

0: 20 फिल्में थी लीडर 24, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थिंकिंग वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की जगह है जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था।
0: बिल्कुल, नहीं नहीं, ओटीटी में एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
1: जी,
0: और एक कैरेक्टर को अगर तीन सीन में मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चले जाता है
1: जी।
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने सुष्मिता सिंह के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल, यहां सुनते आपकी पसंद का एक और गाना
0: जी। मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं, बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, वो आप सुना दीजिए, लोग घंटा गाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ
1: जी।
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है
1: जी।
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, पसंद किए गए हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी।
1: मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग, हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए पता नहीं साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012-18 बी मूवी करके की, और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी,
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा,
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था। वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना, तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: बिल्कुल। तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री, अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे बहुत।
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो भी अभी करने का मौका मिल गया है। वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाता है।
0: हाँ हाँ,
1: ठीक है, तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे, और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं, और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे चुनिंदा कलाकारों की गायी चुनिंदा गजलें। शुरुआती गजल हम सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: आप सुन रहे हैं भूपिंदर की आवाज में ये गजल।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म।

संगीत। शुरुआती गीत हमने लिया है कलयुग फिल्म से, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में। सईद कादिर के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

अगला गीत हम सुन रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से, शान और साथी कलाकारों की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये गीत, श्रेया घोषाल और वैशाली मढ़े की आवाज।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुन रहे हैं टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं शंकर एहसान।

स्टेट्स फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो

0: खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देशभर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, हिंदी सिनेमा को सादगी, संवेदनशीलता और रिश्तों की खूबसूरत कहानियां देने वाले फिल्मकार थे ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशक, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने ऐसी फिल्में रची जो आज भी दिल के बेहद करीब हैं। उनकी फिल्मों के गीत भी उतने ही मधुर और यादगार रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ सदाबहार नगमे। गोलमाल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये गीत था फिल्म चुपके चुपके से, आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी ने इसे रचा और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म अनाड़ी से, लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

मंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया।

0: दिलों में बसते हैं। गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

खूबसूरत इस फिल्म का गीत अब आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में। गुलजार की शब्द रचना है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। साथियों, आज हम आपको सुनवा रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की कुछ गीत। उनकी फिल्मों की तरह उनके गीत भी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

कार्यक्रम सुरीला सफर सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप है हमारे हम सफर। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि क्या है आज की इबारत। प्यार मोहब्बत के इशारों को, आवारा बादल पागल सौदाई को दुनिया में कौन समझा है। एक लड़की गाती है गुनगुन कि तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है।

जिसे देखकर परवाने होते हैं कुर्बान, वो आ तो गई पर बड़ी छोटी है मुलाकात और ये बेईमान भौरा देखो कैसे मुस्काए और रोज डाली पर क्या लिख जाए कि प्यार अभी ना हुआ तो कभी नहीं। कोई लड़की रात सपने में मिली थी कि इश्क में बर्बादी का सोग मनाना फिजूल है, तो प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेश मैसेज कमेंट्स पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं कुछ संदेश कुछ संदेशे।

शाम ढलते ही तन्हाई के साए में कोई पुरानी धुन दिल को महका जाती है, जैसे दूर किसी वादिये पुरनूर से पायल की झनकार आ रही हो। जब तक दिलदार का दीदार ना हो, ये रंगीन शाम भी अधूरी सी लगती है। और चाहत के इस सफर में हम आहट पर यही गुमान, मतलब हर आहट पर यही गुमान होता है कि वो आ रही है। इस उम्मीद पर परवाने भी लौ पर अपनी जान निसार कर देते हैं। मुलाकात का पल चाहे कितना भी मुख्तसर हो, उसकी यादें उम्र भर का सरमाया बन जाती है। उस नादान की अदाओं पर फिदा होकर ये दिल बार बार बहक जाता है और इकरारे मोहब्बत का ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मधुमती और आप हमें बता दीजिए कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है।

जवाब तो हमें मिल गया है कि इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था सलील चौधरी का। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त आज हमारी ही तरह इबारत लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि क्या बात है भाई। गीतों का ये सुरीला सफर शायराना आशिकाना होता जा रहा है, यानी कि तुम भी चलो हम भी चले और चलती रहे जिंदगी। वैसे ये गीत आज की लिस्ट में नहीं है दोस्तों। अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। एक मैसेज मिला है कि देखा जाए तो इजहार से शुरू हुआ प्यार का सफर इंतजार की गलियों से गुजरता है, विरह के आंसू से धुलकर ये और गहरा हो जाता है और अंत में मिलन के आनंद से आनंद में डूबकर अमर हो जाता है। यही मोहब्बत का मुकम्मल चक्र है। जुबां से तो कह ना पाए कभी हम, मगर आज आंखों से सब बयां कर बैठे हैं। तुम आओगे कभी ये सोचकर ऐ सनम, सांसें भी सीने में कुछ ठहर सी गई हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। अगला कमेंट है कि यादें भी कितने खूबसूरत होती हैं, बीते हुए लम्हों को फिर से जीने का बहाना देती हैं। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादें हर खामोश शाम को खास बना देती हैं। शुरुआत में प्यार मोहब्बत में गुमसुम से एहसास के साथ एक झिझक सी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार का इजहार नकार दिया जाए। लेकिन आवारा बादल सा दिल बेखबर और नादान भौरे की तरह गली गली मंडराते हुए किसी तरह पागल सौदाई की तरह इजहार कर बैठता है और पुकार बैठता है प्यार को। फिर शुरुआत होती है मुलाकातों की, जहां छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं।

दोस्तों, सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म में जो होती है उसमें डबल रोल ही नहीं, जीवन में भी दो मुंह वाले, दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं। तो इस बारे में भी अपने विचार भेज दीजिए। आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों, और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और अभिनेता तैयार होकर कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिए जरा।

कमेंट्स मिला है कि आज आपका पहला सफर है पर घबराए ना, हम सब आपके साथ हैं और थोड़ा बहुत कुछ है भी तो हम श्रोता भी समझते हैं कि आज आपका पहला दिन है।

एक श्रोता मित्र हमें लिखती हैं कि आज तो हमारे भाई के घर रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ, तो कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, मगर इबारत से लगता है कि आज तो बहुत सुरेले और दिलकश गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

साथियों, सुरीला सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है नौशाद, फिल्म का नाम है राम और शाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दो नायिकाएं थी उनके नाम बता दीजिए, लिख भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर।

दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया। दोस्तों आप हमें लगातार जवाब और मैसेज तो भेज रहे हैं और हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में एक बात कॉमन है, और वो क्या बात है जरा बता दीजिए। सीता और गीता इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, तो उस फिल्म का नाम लिख दीजिए।

एक श्रोता ने लिखा है कि उस फिल्म का नाम जिसमें श्रीदेवी थी उसका नाम है चालबाज। सीता और गीता की रीमेक थी वो फिल्म।

यानी कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में जो बात कॉमन है वो क्या है वो तो आपने बता दी। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अंजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है डॉन और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, नाम क्या है वो बता दे हमें। और हमें आपसे ये भी पूछना है, एक गीत जो हमने आपको बताया वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, बात फैली है घर घर घर, गोरिया गाए गुनगुन। ये गीत अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि ये किस गीत का अंतरा है।

कार्यक्रम सुरीला सफर। एक साथी मित्र ने हमें लिखा है कि हम अभी राखी की तैयारी में लगे हैं और समय निकालकर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं क्योंकि कल नहीं सुन पाएंगे, कल हम बाहर जाने वाले हैं। और ये अगला संदेशा है कि जिस फिल्म में डबल रोल होता है वहाँ एक पात्र सीधा और दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक क्यों होता है, सोचने वाली बात है। एक साथी ने लिखा है कि अक्सर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि कभी तुम भी तो कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, तो मैं तो हमेशा इजहार करता ही हूँ। हाय

किस्मत शादी को इतने साल हो गए पर धर्मपत्नी सिर्फ शर्माती हुई दीवाना कह देती है मुझे और गुनगुना देती है कि बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते मैं तो हार गई रे। एक मैसेज शिकायत वाला भी मिला है पर प्यार भरा है। पटर पटर बोलती हो बहुत ऐसा मेरे लिए लिखा है। दोस्तों अगर आप ये समझ ही गए हैं कि आज के सुरीला सफर में हमने ऐसी फिल्मों के गीतों को चुना है जिसमें नायक और नायिकाएं डबल रोल में थे तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल ट्रिपल रोल किए गए थे तो आपको याद हो तो उन फिल्मों के नाम लिखकर संदेश हमें भेज दीजिए।

उन्होंने झांसी की नंदनी टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता मित्र लिखते हैं कि मुझे फिल्म मौसम की याद आ रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने डबल भूमिका निभाई थी और नायिका और उनकी बेटी के बेटे के रूप में संजीव कुमार अभिनेता थे। और धर्मेंद्र जी ने डबल रोल किया था यकीन इस फिल्म में। तो अब अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है चालबाज और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो दो हीरो थे उनके नाम हमें लिख भेजिए। श्रीदेवी के

हमारे श्रोता लिखते हैं कि चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ हीरो थे रजनीकांत और सनी देओल, और किसी ने अनिल कपूर भी लिखा है जो कि गलत है। और ये अगला कमेंट है कि मेरा साया में साधना का डबल रोल था और कहो ना प्यार है में ऋत्विक रोशन भी डबल रोल में थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दो फूल और दिल तेरा दीवाना तथा हमजोली में महमूद, जिगरी दोस्त जैसे को तैसा तथा प्यासा सावन, जितेंद्र, किशोर कुमार बॉम्बे का चोर, अशोक कुमार मेरी सूरत तेरी आंखें और शाहरुख खान डॉन तथा पहेली में डबल रोल में थे। तो साथियों, अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें ये बता दीजिए कि काजोल के साथ में इस फिल्म में विलन कौन थे।

मंगेशकर और कुमार सानू गीतकार थे, आनंद बख्शी संगीतकार थे, उत्तम सिंह। फिल्म का नाम था दुश्मन। और एक श्रोता मित्र ने जवाब लिखकर भेजा है कि काजोल के साथ में दुश्मन फिल्म में जो विलन की भूमिका निभाई थी वो आशुतोष राणा थे। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि जैसे को तैसा, जिगरी दोस्त, बैराग, संजीव कुमार की नौ रोल वाली फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था, आंटी नंबर वन, चाची 420 और अंगूर, इज्जत में धर्मेंद्र का डबल रोल, दो कलियां में नीतू सिंह, सावन भादव में नवीन निश्चल, कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और गजब में धर्मेंद्र। तो भाई आपके जो कमेंट्स थे उसमें तो हमें बहुत लंबी लिस्ट मिल गई कि डबल रोल वाली फिल्में कौन सी थी।

डैनी का डबल रोल था फिल्म बुलंदी में और डबल रोल प्यार के इजहार पर आज आपने सुरीला सफर में शानदार कार्यक्रम पेश किया, ऐसा एक मैसेज भी हमें हमारे श्रोता से मिला है। एक कार्यक्रम में एक मैसेज और पढ़ लेते हैं कि ये जीवन ठहरने का नाम नहीं, चलने का नाम है और प्यार मोहब्बत से जिंदगी चलती है। इससे सुंदर क्या हो सकता है, हम इस संसार में अपने आप अपने अपने हिस्से की यात्रा लेकर आते हैं। बादल आसमां और कलकल करती बहती नदी यादों का समंदर लेकर आती है। आज सुरीले सफर कार्यक्रम में जो गीतों की नदियां आपने बहाई, हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल भी हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे और आज की प्यारी उद्घोषिका के साथ हमने कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक श्रोता मित्र ने हमें ये मैसेज भेजा।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुलाकात पर। मुलाकात केवल दो लोगों का मेलजोल नहीं होता, ये भावनाओं, यादों और अपनापन का एक सुंदर संगम होता है। कभी कभी वर्षों बाद किसी अपने से हुई छोटी सी मुलाकात भी मन में ऐसी खुशियां भर देती है जैसे सूखे हुए आंगन में अचानक फूल खिल उठे हो। हर मुलाकात अपने साथ कुछ पल लेकर आती है, कुछ मुस्कानें, कुछ बातें और कुछ यादें। कुछ मुलाकातें जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देती हैं, तो कुछ मुलाकातें बीते हुए पलों को फिर से जीवंत कर देती हैं। अपनों से मिलने का आनंद शब्दों में नहीं बल्कि आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान में दिखाई देता है। मुलाकातों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक सच्ची मुलाकात कई शिकायतों को मिटा सकती है और दिलों के बीच की दूरियों को कम कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार

जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर संदेशों और साधनों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का एक एहसास ही अलग होता है। किसी अपने की आवाज, मुस्कान और साथ बैठकर बिताए हुए पल रिश्तों को और भी गहरा बना देते हैं। मुलाकात वो खूबसूरत पल है जहाँ समय कुछ देर के लिए ठहर जाता है, यादें मुस्कुरा उठती हैं और दिल कहता है कुछ रिश्ते दूर रहकर भी पास रहते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जो कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी यादें जीवन भर हमारे साथ चलती है। किसी अपने से मिलना मन को वैसी ही शांति देता है जैसा लंबे समय बाद थकी हुई आत्मा को सुकून की छांव मिल जाए। मुलाकात का अर्थ केवल सामने बैठकर बातचीत करना नहीं, इसमें अपनापन होता है, भावनाओं की गर्माहट होती है और एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को समझने का अवसर होता है। कई बार वर्षों बाद हुई एक मुलाकात पुराने रिश्ते में नई जान डाल देती है। बचपन के मित्र, बिछड़े हुए रिश्तेदार या पुराने परिचित जब मिलते हैं तो बीते हुए दिनों की यादें फिर से आंखों के सामने जीवंत हो जाती है।

कुछ मुलाकातें अचानक होती है और जीवन में विशेष स्थान बना लेती है। राह चलते किसी पुराने साथी से मिल जाना, किसी प्रियजन का अचानक घर आ जाना या किसी लंबे इंतजार के बाद अपने से मिलना, ये पल मन में खुशी की नई रोशनी जगा देते हैं। ऐसी मुलाकातें हमें एहसास कराती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती समय और दूरी से कम नहीं होती। आज की आधुनिक समय में हम दूर बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का महत्व अलग ही है। किसी की आंखों में खुशी देखना, चेहरे की मुस्कान महसूस करना और साथ बैठकर कुछ पल बिताना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। शब्दों से अधिक कभी कभी एक मुलाकात बहुत कुछ कह जाती है। मुलाकातें हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना आवश्यक है। जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और साथ की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। कुछ मुलाकातें जीवन बदल देती है। ऐसी मुलाकातें हमारे विचारों और रास्तों को नई दिशा दे सकती है। मुलाकातें जीवन की किताब के वे सुंदर पन्ने हैं जिसे पढ़कर मन बार बार मुस्कुरा उठता है, क्योंकि सिर्फ मिलते नहीं, वे अपनी मौजूदगी से अपने जीवन में खूबसूरत एहसास छोड़ जाते हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र

0: स्तर के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित आईआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयंसेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं +9779

0: 5131608 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार

पैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

होली आई रे इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई आप बड़ा कुछ

0: एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है दान सिंह की, फिल्म का नाम है माई लव।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तीसरा कौन।

ये तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दे।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने। संगीतकार थे रोशन। फिल्म का नाम था दिल ही तो है।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है आशिक।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है संगम।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार,
0: हेल्दी नमस्कार।
1: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी, सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार।
0: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
1: बिल्कुल,
0: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना।
1: बिल्कुल,
0: यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम जो विषय लेके आए हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
0: यानी कि वर्ल्ड लेक डे। जी,
1: तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता है वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
0: हाँ,
1: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
0: बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना, उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
1: बिल्कुल।

0: और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
1: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहां हैं जहां उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहां रह रहे हैं वहां पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहां रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग बस आते जाते रहिए।
0: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, माता पिता वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहां पे हमेशा से रह रहे हैं, वहां पे उनका पूरा सब दोस्त है, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण है, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
1: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारी जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
1: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं, या वो नहीं जाना चाहते या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी समस्या आज
1: ये बात तो है, ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहां पे रोज की चादर तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन्स वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
1: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
0: जी,

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए।
0: हाँ,
1: कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते
1: हैं,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था
0: जी। और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना वो भी कोई सुखद नहीं था। कठिन परिस्थितियों और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी
1: जी।
0: उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
1: बिल्कुल, और अब खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है उन्हें देखा तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें अकेला उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफर था आरती ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूं तो मुझे जरूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
1: बिल्कुल,
0: और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल, और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले

0: पढ़े अनेक बच्चे आगे बढ़कर आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना, जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
0: बिल्कुल, उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
1: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने लाकर दिखाया, वो
1: लाकर दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना। बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हम क्या कर सकते हैं।
0: एक गीत सुने,

0: ऐसा तो होता है कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता है। कोई सखी भी हो सकती है।
1: हाँ, और क्या ऐसे तो
0: पता है आरती एक हल्की सी शर्मिली से मुस्कान दे रही है सारी।
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की मां कहा जाता था जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
0: जी। और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है। वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनके जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी है जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही है। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कहीं उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती है कि आज सिंधु आई को आपने याद किया इसलिए धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधु आई हमारे वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आई ने यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था तो जब वो गर्भवती थी और आई ने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा था जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
0: बिल्कुल सही कहा और हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो डट कर उसका सामना
1: हार नहीं मानना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: एक गीत सुन ले।
0: चलो एक

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे होता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। बिल्कुल, साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती है। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं। झीलें बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे

0: मछली पकड़ना, कृषि है उस पर या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर हमें जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्रस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है जो अपने सुंदर नजारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहां के नजारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल। और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल के कार्रवाई हो जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसे ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल। और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
0: जी। और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी बंटती हैं, एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह, लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं।
1: बिल्कुल। जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए, बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में

0: रानी और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है। दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील अन्ना सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताई जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहां उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो कहते हैं भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना तो अब वहां से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहां पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। गीत सुन ले,
0: चलिए सुनते हैं।

नहीं देखो गीत था ना, बहुत प्यारा। और ये जब बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुककर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना

0: बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ देखो ना दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखें, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर में बिल्कुल उम्र के अनुसार कुछ बदलाव भी करना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं।
1: कोई सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर
0: करता है। घर को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
1: आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपकी आवाज पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
0: बिल्कुल। और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है, और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देखकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
1: बिल्कुल। अब हम ये स्वावलंबी बन जी बिल्कुल हाँ अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहां की बच्चों को भी जहां वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत हैं वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श कर लीजिए।
0: बिल्कुल। और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े,
1: जरूरत ही
0: किसी चीज की
1: जी।
0: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए, बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए, बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल। अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए, और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपनी अपनी सारी जरूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है, अपने परिवार बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें, वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे, और नई तकनीक

0: उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीजें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना, या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और ये सब चीजें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
1: बिल्कुल। और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या किया गया?
0: संगीत।

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। कोई अच्छी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। यह सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएं देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उनपे अमल करना चाहिए। साथ ही आजाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खासतौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है। घर में भी हम कितना भी ख्याल रख लें, तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि घर में घुसते से अगर किसी को ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो

0: ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। दीवारों और फर्श को गीला न रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं। कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे। और अलमारी, जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है। और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं उसमें तो जो सीलन की महक है वो आती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: भाग जाते हैं।
1: जो कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीजें करने से और क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश में हमारी सखी बताती है कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए। और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह है या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें, इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी दो दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फफूंद सी बन गई है या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी खट्टा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता जी लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है। और साथ ही आप लौंग और दालचीनी और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं है ना, और भर के कोनों में रख दें जहां पर सीलन ज्यादा होती है, तो ये चीजें जो होती है ना वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं। और पानी में थोड़े से गुलाब जल में आप डाल सकते भी छिड़क सकते हैं घर में, तो ये सब चीजें आप जो बताए ना ये सब चीजें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर तक बनी रहती है,
0: बहुत देर तक बनी रहती है और एक बड़ा सात्विक सा माहौल घर में हो जाता है। और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से। और नींबू और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े सूख जाएं,
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी।
0: बिल्कुल काले कलर के कपड़े होते हैं ना तो कैसे उसमें फफूंद आ जाए,
1: बिल्कुल,
0: और वो दिखाई देती है असल में।
1: बिल्कुल, तो जो भी गीले कपड़े गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है। क्योंकि जहां से भी टपक रहा है पानी या जहां पे सीलन आ रही, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहां सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहां पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदे मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है। और अब अच्छा मूड बनने के लिए गीत चलिए।

वो चूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्व खरामा। मैं कैसे भुला दूँ तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही

0: कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कब आए थे वो कब गए, कुछ याद नहीं है।
1: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता है जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती।
2: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजीरों में आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्धि है, तो मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम DHL जो जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग, रेलवे का काम होता है, DHL से आता है तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे।
1: जी, जी।
0: बढ़िया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र तड़का
0: कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता है मुझे।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हूँ?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाजें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफा जी बताइए क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि इससे कोई दवाई का सहायता नहीं हुआ या शिकायत की हो।
0: आजकल
1: दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: तो क्या तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप, इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के कि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन नहीं करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
0: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो। तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
1: जी हाँ, हालांकि कई मेडिकल स्टोर पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं, तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
0: जी जी, मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है, इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है बहुत सारे जगह में मिल जाती है, वो उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
0: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
1: मैम एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, तो उनकी फिल्म आई थी BV No. 1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम BV No. 1।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो इधर मांडो पे है।
0: मांडो ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताएं। हाँ। हमारे श्रोताओं को कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडो इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है।
0: जी जी, देवास भी है, है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह मंदिर है।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा?
1: हाँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड भी है, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती

0: ऑडिशन सीडी वैसे ही खरीदते थे।
1: अरे वाह क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
0: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या सीडी कैसेट बिकना ही बंद हो गई तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल वगैरह से। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए यानी मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
1: चलिए मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद अब आराम कर रहे
0: हैं। आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं।
1: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे। तो
0: हाँ गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता हूँ।
1: तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
0: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
1: जी जी।
0: तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के हर बाहुएं

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्या बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूमि, असम से।
0: अच्छा,
1: मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी।
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम
0: जी। जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी।
0: जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसी भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना।
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियाँ आपने खुद रची है कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, इमिटेट किया है
0: जी।
1: सब अच्छा लगता है शायरी, तो छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: है? असम में सुनिए मोहम्मद।

0: जी, हमारे असम में डाइवर्स टू पार्ट है. एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली. बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है. हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है. और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है. एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं. वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुम्हाके भालोबासी, वो बोलते हैं मैं तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लेंगे.
1: और बच्चे को शुवाली,
0: शुवाली जी जी जी, आपने सही पकड़े है. और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, जायकेदार चा, क्या बात है. और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है.
1: जी जी.
0: तो ममता जी, आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
1: हैं. जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे, बंसी सुर में गाते है, भौरे गुनगुनाते है, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी
0: जी। प्रदीप जी बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम।

0: रिटायर हो गया मैं।
1: अच्छा अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से?
0: हाँ, सरकार से पेंशन मिल गई है।
1: हाँ।
0: और सब चीजें मिल गई है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया मैं।
1: अच्छा अच्छा, ओ
0: उनके बच्चों को बड़ा हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही थी, यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा होता।
1: देखिए ना, जब हम टीसी को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी बिहड़ इतनी तकलीफ देह यात्रा भी करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है, तो
0: बिल्कुल
1: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर? आपकी बहन की राखी आई?
0: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती है राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
1: जी जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई कुछ?
0: हाँ, वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
1: अच्छा जी जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को।
0: जी जी,
1: और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो
0: जी जी जी,
1: चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
0: राखी धागों का त्योहार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह किन्नारे बोल रहा था।
0: जी बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: जी बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के बाद लगा।
0: जी बिल्कुल, एक बार क्या इसके पहले बात हुई थी पर भी कई महीने पहले, तो बताइए क्या हाल है अब, भोपाल का क्या हाल है, भोपाल में क्या गतिविधियाँ चल रही है आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल में। बाकी तो आसपास के क्षेत्रों में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी वहाँ पे, देर से आई लेकिन बरसात आ गई समय से आ गई।
0: जी तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है। हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है।
1: हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी जी जी,
1: और मेरी बहने, तीन बहने गई है तीर्थ यात्रा पे।
0: अच्छा, तो राखी कैसे बांधेंगे 28 तारीख को?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में।
0: जी जी जी,
1: और वहाँ से कल सभी बहने हमारी गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहाँ सब बहने आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: हम तीन चार दिन धूमधाम से रहेंगे, बहनों के उनका स्वागत करना रहता है।
0: क्या बात
1: जब
0: है,
1: कोई हमारे तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह,
1: कहा ये जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा भेजते थे तो उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक, तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं।
0: अच्छा,
1: फिर घर लेके जाते हैं। जी
0: वाह वाह, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया, आप जाएंगे और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है तो राखी भी बन जाएगी फिर तो।
1: जी जी जी,
0: तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों
0: जी।
1: को पसंद जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया, और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज, मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके जी चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
0: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं, तो आपने क्या देखा बताइए आप?
1: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहाँ पे मैं देखने के लिए गया था।
0: हाँ,
1: और
0: श्रवण सिंह किन्नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की, तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है, तो जब भी जंगल में जाए या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़े तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़े। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह किन्नारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना, फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: विशाल यादव
0: जी। विशाल जी बताइए, कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, जो क्लासिक रहती है और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया
0: जी। तो लग गया है फोन?
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन बार में देश गान आता है, रामचरित मानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूले मिश्र गीत, हमें रहे प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन नहीं है भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं, जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है और धर्म का भाई भी है ना, प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है, ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ तो बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी जी,
1: राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यह पत्रों का शहर बनी है, यहाँ का पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर बनी है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिल्ली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है तो आज भी मेहमानों के राह में फूल बिकाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा।
1: नंबर वन,
0: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
1: सेवाया बनाते हैं और बहने आती है, राखी बांधते हैं और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मुल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
0: जी जी,
1: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, शर्मावती ने राखी भेजी थी।
0: जी जी, और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
1: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते, ऐसी भी परंपरा में।
0: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो
1: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात सिरों में भी प्यार नहीं होता।
0: जी क्या बात है भाई, और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, मेरी बहन का गाना, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा के आदमी, विवेकानंद सिन्हा का गाना है।
0: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्ण।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बेटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं।
1: जी।
0: तो पत्र भी लिखते हैं?
1: जी, अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम है।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को, भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया, नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं। मैं तो लिखता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: थी। बाद में शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था,
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
1: मैंने
0: था।
1: तो लगभग सजाए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खतों के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी। तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोरई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम का
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम हिमालय की गोद में और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
0: जी मुकेश की आवाज में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। शाम के 5 बजे यहां प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे 5:05 पर ये फरफानी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज यहाँ श्रोता सुनेंगे विश्व झील दिवस पर चर्चा, विश्व संस्कृत दिवस पर चर्चा, साथ ही सुनेंगे रक्षा बंधन भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार पर चर्चा, और साथ ही आप सुन सकते हैं गीत विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मंदिर के अंक से। आप सुनेंगे 5:30 पर रात 9 बजे हमारे मुंबई के अंतर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 से हमारे जयपुर केंद्र से।

शाम को आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:30 मिनट पर जयपुर से प्रस्तुत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे जयपुर केंद्र से। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं 8:45 मिनट पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत हमारे स्टूडियो से और रात 11:00 आप सुनेंगे हमारे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

कल सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर आपसे हिंदी चिंतन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से यही सिर्फ वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। हमारे स्टूडियो से 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। खेती में बात का समय रहेगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6:50 पर। वातावरण का समय रहेगा 7:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे मुंबई केंद्र से। कुछ देर से प्रोग्राम होगा 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनाया जाएगा।

सुगम संगीत आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से सुबह 9:00 का समय पर और सुबह 11:00। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं 9:30 पर, 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत और 11:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे हमारे लोक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे 5:30 पर और रात 9:00 हमारे मुंबई केन्द्र से। चौपाल का समय रहेगा 7:00, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत और लोक भजन। जयपुर से प्रचारित कार्यक्रम हमारे जयपुर केन्द्र से आप सुनेंगे 7:30 पर, रात 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

FM 106.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा वाणी।

हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। जी हाँ युवा दोस्तों, हर वक्त जब अंधेरा होता है तो उसके बाद सवेरा जरूर आता है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, अपने तय किए मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने से कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। इन्हीं के साथ युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को शबाना शेख का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे विश्व झील दिवस पर, विश्व संस्कृत दिवस पर, और भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन पर बातचीत। तो पहले करते हैं विश्व झील दिवस पर बात। दोस्तों, प्रतिवर्ष 27 अगस्त को मनाया जाता है विश्व झील दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की। इसके बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर 27 अगस्त 2025 को पहला विश्व झील दिवस मनाया गया। झीलें केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवन रेखा और जैव विविधता की अनमोल धरोहर है। ये तारीख 1984 में जापान के शिगा प्रांत में आयोजित हुए पहले विश्व झील सम्मेलन की याद में चुनी गई है। इस सम्मेलन ने झीलों के संरक्षण की दिशा में वैश्विक प्रयासों की नींव रखी है। इसका उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र, उनके आर्थिक महत्व और जलवायु नियंत्रण में उनकी भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्तमान में दोस्तों दुनिया भर की 10 करोड़ से अधिक झीलें मानवीय और प्राकृतिक कारणों से खतरे में हैं। वो कारण है बढ़ता प्रदूषण, जैसे फैक्ट्रियों का कचरा, सीवेज और खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरकों का पानी में मिलना, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण झीलों का पानी तेजी से सूख रहा है और वाष्पीकरण बढ़ रहा है, अत्यधिक दोहन, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए झीलों से जरूरत से ज्यादा पानी निकलना। तो दोस्तों, झीलों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें करना है झीलों और उनके आसपास प्लास्टिक या अन्य कचरा न फेंकना है। झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं। स्थानीय स्तर पर झीलों की सफाई और उनके पुनरुद्वार का कार्य करना है। तो ये तो बात थी हमारी विश्व झील दिवस पर।

0: पैसे मिलेंगे?
1: So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहें.

विश्व संस्कृत दिवस रोमन कल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक आयोजन है जो प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत पर केंद्रित है। इसमें भाषा के बारे में व्याख्यान शामिल है और इसका उद्देश्य उसके पुनरुद्वार और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह श्रावण के पूर्णिमा को मनाया जाता है जो हिंदू पंचांग के श्रावण महीने की पूर्णिमा होती है। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन पंचांग के अगस्त महीने के साथ मेल खाता है। संस्कृत संगठन संस्कृत भारती इस दिवस को बढ़ावा देने में शामिल है। श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन को ऋषियों के स्मरण और उनकी भक्ति के सम्मान का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा जाता था। इस दिन गुरूकुलों में वेदों के अध्ययन से पहले यज्ञ उपवीत पहनाया जाता है। इस समारोह को उपनयन या उपकर्म संस्कार कहा जाता है। पुराने यज्ञोपवीत को भी इसी दिन बदला जाता है। पुजारी मेजबानों को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। ऋषियों को संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत माना जाता है, इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि प्राचीन भारत में शैक्षणिक वर्ष इसी दिन से शुरू होता है। इसी दिन छात्र गुरूकुलों में वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। पौष माह की पूर्णिमा से लेकर श्रावण माह की पूर्णिमा तक अन्य वैदांतिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए अध्ययन रोक दिया जाता था। यह परंपरा आधुनिक वैदिक विद्यालय में था। इसी दिन छात्र गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन शुरू करते थे। पौष माह की पूर्णिमा के दिन यह परंपरा आधुनिक वैदिक विद्यालयों में आज भी कायम है। विश्व वैदिक दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने के निर्देश जारी किए। तब से संस्कृत दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमारी चर्चा थी विश्व संस्कृत दिवस पर।

और दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं रक्षा बंधन पर, जो कि भाई बहन का एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। रक्षाबंधन हिंदू चंद्र पंजाब के श्रावण महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त में पड़ता है। रक्षाबंधन संस्कृत में शाब्दिक अर्थ सुरक्षा दायित्व या देखभाल का बंधन है। ये शब्द मुख्य रूप से इसी अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये शब्द आमतौर पर इसी दिन आयोजित होने वाले एक सामान्य अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस अनुष्ठान में घरेलू पुजारी अपने भक्तों की कलाई पर ताबीज, मंत्र या धागे बांधता है या उनका पवित्र धागा बदलता है और धन का उपहार प्राप्त करता है। कुछ स्थानों पर आज भी ऐसा ही होता है। इसके विपरीत लोक संस्कृति में उत्पन्न भाई बहन के त्योहार के नाम स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न थे। कुछ को सालोनों, सिलोनों और लकड़ी के रूप में वर्णित किया गया था। सालोनों से जुड़े एक अनुष्ठान में बहनें अपने भाइयों के कानों के पीछे जौ की बालियां रखती थी। रक्षाबंधन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके जन्म क्षेत्र या ग्राम बहिर्विवाह के प्रथा के नियत है। दुल्हन अपने मायके या कस्बे से बाहर शादी करती है और रीति रिवाज के अनुसार उनके माता पिता उनके ससुराल नहीं जाते। उत्तरी भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां गांव बहिर्विवाह का प्रचलन प्रबल है, बड़ी संख्या में विवाहित हिंदू महिलाएं हर साल इस त्योहार के लिए अपने मायके लौटती है। उनके भाई जो आमतौर पर अपने माता पिता के साथ आसपास रहते हैं, कभी कभी अपनी बहनों को वापस आने के लिए उनके ससुराल जाते हैं। कई युवा विवाहित महिलाएं समारोह से कुछ सप्ताह पहले अपने मायके पहुंच जाती हैं और समारोह तक वहीं रहती है। भाई अपनी बहनों के ससुराल और मायके के बीच आजीवन मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा के संभावित संरक्षक भी होते हैं। शहरी भारत में जहां परिवार तेजी से एकल परिवार बन रहे हैं, ये त्योहार अधिक प्रतीकात्मक हो गया है।

लेकिन फिर भी बहुत लोकप्रिय बना हुआ है। इस त्यौहार से जुड़े रीति रिवाज अपने पारंपरिक क्षेत्रों में पर फैल गए हैं और प्रौद्योगिक और प्रवासन के कारण रूपांतरित हो गए हैं। अन्य कारक जिन्होंने भूमिका निभाई है वो है फिल्मी, सामाजिक संपर्क और राजनीतिक, हिन्दू धर्म द्वारा प्रचार, साथ ही राष्ट्र राज्य द्वारा भी ये मनाया जाता है। इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और ये भाई बहन के अटूट प्यार का बंधन होता है।

सुंदरसन किनारे पर पहुंचकर भी करार नहीं मिलता, जो भीतर ही छुपा हो वो बाहर नहीं मिलता। हमें तो डूबकर तैरना है इस बहते दरिया में, जो बीच में हो दरिया के वो इस पार या उस पार नहीं मिलता। इसी के साथ ये विवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की शमाना शेख को अब इजाजत दे। नमस्कार।

अभी ये यशोदा शिवभवानी कार्यक्रम सुन रही थी फिल्म बैंड एक से एक दशमलव तीन मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का यह ही चैनल है। 5:30 मिनट होने को ही थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में हम अपने सभी श्रोताओं का।

इंद्रजीत सिंह तुलसी की ये रचना आपने सुनी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजें। फिल्म शोर का गीत था।

जब तक रहे।

राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया आशा भोसले ने। आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी की रचना फिल्म समाधि से। विविध भारती का ये कार्यक्रम है तराने नए पुराने।

0: असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में रूप तेरा मस्ताना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

उपहार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, तरानी नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 6:05 से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें

0: 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
0: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
1: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने ईजेएम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की एनएसएस इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रूपये हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रूपये पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रूपये की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रूपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना। फिल्म थी आ गले लग जा, साहिल ध्यान वी के बोलो को सुर में ढाला राहुल देव बर्मन ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कुंतला भरने
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

ये गीत आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। गुलशन बाबरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और ठोकर फिल्म का गीत श्रोताओं इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में साजन दहलवी के बोल थे श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी।

पेंटर बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, कतील शिफाई के बोल है, उत्तम सिंह जगदीश खन्ना की तर्ज है, और श्रोताओं यही है तराने नए पुराने इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का नया चैनल है। 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। यहीं से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और इसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। प्रदेश में 309 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 900 से अधिक दावेदारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से शुरू होगा। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कल से एक सप्ताह तक धीमी पड़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था

0: तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश भर में खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर सहयोग मिले, इसके लिए समुचित खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज वीसी के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि देश का खेल तंत्र अब केवल बुनियादी ढांचे और पदकों तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल पहल लोगों को फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत माय भारत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश भर में हुए इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के एक निजी कॉलेज से इस कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। प्रदेश भर में खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से युवाओं को खेल संबंधी योजनाओं से सीधे जुड़ने और अपने विचार रखने का अवसर मिला। अजमेर में हुए कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी।
3: मेरा नाम अर्जुन परमार है और मैंने रिसेंटली इंडिया का प्रतिनिधित्व फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में किया, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दो गोल्ड मेडल प्राप्त करे। और जो आज के खेल की स्थिति है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो पहले का ग्राफ है और अभी का ग्राफ है, हम उसे कह सकते हैं काफी ज्यादा ऊपर बढ़ा है। कई ज्यादा साई सेंटर खुले हैं।
4: मेरा नाम आजाद है और मैं कबड्डी खेल से हूँ और पिछले साल नेशनल में मेडल किया था। और आज जो प्रोग्राम हुआ है काफी अच्छा प्रोग्राम था और जो भारत में मतलब खेल को लेकर जो फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड हो रही हैं उसको देखते हुए 2036 का जो ओलंपिक है उसमें डेफिनेटली भारत अच्छा करेगा और मेडल का दावेदार होगा।
0: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव के लिए आज पहले दिन 900 से अधिक उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। डीग नगर परिषद के 40 वार्डों के लिए आज पहले दिन 34 प्रत्याशियों ने, वहीं धौलपुर के बाड़ी नगर पालिका के लिए 35 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अगले महीने दो चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। रक्षाबंधन और रविवार का अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र 29 और 31 अगस्त को ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 14 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर निगम कार्यालयों में दावेदारों की गहमा गहमी बढ़ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पार्षद पद के लिए स्थानीय सक्रियता, जीत की संभावना और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई स्थानों पर तीसरे मोर्चों के प्रत्याशियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी बाप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, आम आदमी पार्टी आप और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रियता शुरू हो गई है। भारत अगले महीने होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली के

0: भारत मंडपम में ये सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर भी दृष्टिकोण साझा किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से हनुमानगढ़ में शुरू हो रहा है। लोक देवता गोगा जी की स्मृति में लगने वाले इस वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं।
1: गोगा मेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र और बैरिकेटिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और अपराध रोकथाम के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नौर थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने, अवैध संपत्तियां फ्रीज करने तथा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग बिरंगी राखियों के साथ ही पूजन सामग्री, मिठाई, श्रीफल और मेवों की खरीदारी की जा रही है। समय के साथ ही रक्षा सूत्र ने कई आकर्षक और नए रूप धारण किए हैं। फैंसी राखियों के साथ ही सोने, चांदी और कई तरह के कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध है। रक्षाबंधन के मौके पर सलुम्बर और श्रीगंगानगर जिले सहित विभिन्न स्थानों पर रक्षा का वचन कार्यक्रम रखा गया। महिला सुरक्षा को समर्पित इस कार्यक्रम में महिला अधिकारों और साइबर सुरक्षा की भी जानकारी दी गई। राजसमंद के कांकरोली में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण का विशेष अभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर जिले में सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं ने नशा मुक्ति की राखी बांधकर छात्रों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। मतदाता जागरूकता का संदेश वाली राखियां भी लोगों को लुभा रही है। उधर बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों में भी रक्षाबंधन पर्व पर उत्साह का माहौल है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर संपूर्ण समाज से प्रेम और विश्वास के बंधन में जुड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी संदेश में कहा कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संकल्प का पर्व है। रक्षा सूत्र में रिश्तों के प्रति कर्तव्य निभाने का दायित्व शामिल है। विश्व संस्कृत दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात 8 बजे शुभकामना संदेश प्रसारित होगा। प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाएगा। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन होने के साथ ही साहित्य, दर्शन, कला और बौद्धिक परंपराओं से गहरे से जुड़ी हुई है। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शास्त्री कौशलेंद्र दास ने कहा कि संस्कृत भाषा देश की सभ्यता और इतिहास का प्रतीक है। संस्कृत दिवस भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है।
2: वेदों से लेकर उपनिषदों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी से जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैत और जगत गुरु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत तक, महाकवि कालिदास की काव्य धारा से लेकर चरक सुश्रुत की चिकित्सा विज्ञान तक संस्कृत में जीवन के हर पक्ष को शब्द, काव्य और दृष्टि प्रदान की है। संस्कृत भारत की सीमाओं को लांघ कर तिब्बत, चीन, जावा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अरब, यूरोप, म्यांमार, नेपाल सभी देशों में संस्कृत लिखी जा रही है, बोली जा रही है और संस्कृत के पुरातन ग्रंथों पर काम हो रहा है।
0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार प्रदेश में धीमी होने की संभावना है। इससे अधिकतर हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। 4 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बरसात की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इस मॉनसून सीजन में प्रदेश में

तक सामान्य से लगभग 15% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार डीग, भरतपुर, बीकानेर और फलौदी में अत्यधिक बरसात हुई है। अजमेर, अलवर, कोटा और जोधपुर सहित 22 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। वहीं जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और जैसलमेर सहित 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। प्रदेश में 309 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 900 से अधिक दावेदारों

0: निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 900 से अधिक दावेदारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला कल से शुरू होगा और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कल से एक सप्ताह तक धीमी पड़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में अगस्त माह के दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियां जारी रहीं। जिले में चुनाव को लेकर मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण और कानून व्यवस्था की तैयारियां की गईं। वहीं स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा अभियान के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले की 14 नगरीय निकायों में कुल 5,97,601 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 3,10,345 पुरुष, 2,87,248 महिला और 8 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में लक्ष्मणगढ़, खाटू श्याम जी, दांता, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, रिंगस, अजीतगढ़ और पलसाना में मतदान होगा। दूसरे चरण में सीकर, रामगढ़, शेखावाटी, लोसल और धोद में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी। नगर परिषद फतेहपुर का मतदान पहले 11 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन भाद्रपद अमावस्या को होने वाले धार्मिक आयोजनों और संभावित यातायात दबाव को देखते हुए इसकी तारीख बदलकर 9 सितंबर कर दी गई है। चुनाव की तैयारियों के तहत जिले में 185 एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्हें मतदान केंद्रों का निरीक्षण, कानून व्यवस्था पर नजर, आदर्श आचार संहिता की पालना और चुनाव संबंधी सूचनाओं के तुरंत आदान प्रदान की जिम्मेदारी दी गई है। मतदान दलों के प्रशिक्षण और रवानगी के लिए विभिन्न सरकारी भवन और खेल मैदान भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूचियों के अपडेट, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाओं और संवेदनशील तथा क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को चुनाव काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने और निर्धारित समय पर सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। जिले में चुनाव के दौरान साइबर ठगी से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने फर्जी लिंक, ओटीपी, क्यूआर कोड, फिशिंग ईमेल और फेक वीडियो से सावधान रहने की अपील की है। मतदाता सूची या मतदान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने और साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला खेल स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद किया गया तथा राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा में एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने लोगों को समय पर जांच और उपचार कराने का संदेश दिया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में टीकाकरण, परिवार कल्याण, मौसमी बीमारियों, प्रसव, एएनसी और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से जुड़े कामों की समीक्षा की गई। बरसात को देखते हुए अस्पतालों में भवन, बिजली और अग्नि सुरक्षा की जांच कराने तथा जर्जर भवनों में चिकित्सा सेवाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। डायरिया और उल्टी दस्त की रोकथाम के लिए पानी के नमूनों की जांच और मच्छरों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां करने को कहा गया। टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, एक्सरे और निक्षय पोषण योजना का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की हाल ही में बैठक हुई। बैठक में दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए। अवैध कट पर साइन बोर्ड लगाने, ग्रामीण सड़कों पर रेडियम युक्त संकेतक लगाने और प्रमुख स्थानों पर यातायात व्यवस्था सुधारने पर चर्चा हुई। जिले के प्याज को एक जिला एक उपज तथा अरड़ू को एक जिला एक वनस्पति में शामिल किया गया है। ओडीओपी नीति के तहत प्याज और अरडू

0: आधारित उद्यमों को ऋण, तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार 21वीं सदी रा भारत माए नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय किनो। प्रदेश माए 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। पहला दिन 932 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल किना। उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल शुरू भेला। राज्य रा घनखर हल्का माए कालू एक सप्ताह टाइम बिरखा मंदी पड़बारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकार 21वीं सदी रा भारत माए नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय किनो है। वे आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि खेल प्रतिभावान हर लेवल माथे मदद मुहैया करावन सारू जरूरी खेल तंत्र विकसित करियो चाह रियो है। प्रधानमंत्री कहो कि खेल केवल तमगा जीतन ताई सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत बनावन माए देश री खेल प्रतिभावां और नौजवाना न जोड़बारो अभियान है। वह देश माए खेलना रे बेहतर करियर और पेशारा तौर समय आवन माथे खुशी जताई। श्री मोदी कहो कि खेल चैंपियन बनवा सागे बेहतर प्रतियोगी बनबोई सिखावे है।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: इस मौके युवा मामला तर खेल मंत्री मनसुख मांडविया कहो कि देश रो खेल तंत्र अब केवल बुनियादी ढांचा और तमगा ताई सीमित नहीं है। वे कहो कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल सरीखा जतन जनता ने फिटनेस ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन री सीख देवे है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 रा सिलसिला माए मेरा युवा भारत माई भारत री ओर आखा देश माए राखी जा इन कार्यक्रम माए राज्य और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशा रा हर जिला रा दो दो कॉलेजा रा नौजवान शामिल फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा एक गैर सरकारी कॉलेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए इन कार्यक्रम जुड़िया। इस मौके वे कहो कि नौजवान भारत री सब मोटी पूंजी है। नौजवाना रा धीरज, खुद माथे भरोसा और लगातार मेहनत हुई विकसित भारत बनावन रो संकल्प साचो करियो जा सके है। प्रदेश रा नौजवाना नई खेलो इंडिया संवाद रे जरिए खेलाऊ जुड़ी योजनावां सीधा जुड़बा और विचार राखण रो मौको मिल्यो। अजमेर माई फिया एक कार्यक्रम रे दौरान नौजवान खिलाड़ी वारी बात रखी।
4: मेरा नाम अर्जुन परमार है और मैंने रिसेंटली इंडिया का प्रतिनिधित्व फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में किया, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करे। और जो आज के खेल की स्थिति है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो पहले का ग्राफ है और अभी का ग्राफ है, हम उसे कह सकते हैं काफी ज्यादा ऊपर बढ़ा है। कई ज्यादा साई सेंटर खुले हैं।
5: मेरा नाम आशीष जाट है और मैं कबड्डी खेल से हूँ और पिछले साल नेशनल में मेडल किया था। और आज जो प्रोग्राम हुआ है काफी अच्छा प्रोग्राम था और जो भारत में मतलब खेल को लेकर जो फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड हो रही हैं उसको देखते हुए 2036 का जो ओलंपिक है उसमें डेफिनेटली भारत अच्छा करेगा और मेडल का दावेदार होगा।
1: प्रदेश में 309 नगरीय निकाय चुनाव सारू आज अधिसूचना जारी फेवन सा गई।

0: पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फेंक्यो। पहला दिन 900 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्ड सारू 10 उम्मीदवार नाम पाना भरिया। डीग नगर परिषद सारू 34 और बाड़ी नगर पालिका माए 35 उम्मीदवार पर्चा भरिया। राज्य निर्वाचन आयोग रा मुजब 9 और 11 सितंबर नवेवन वाला स्थानीय निकाय चुनाव सारू पर्चा 31 अगस्त ताई दाखिल कराया जा सकेला। राखी और दीतवार री छुट्टी रे कारण काल और 30 अगस्त न पर्चा दाखिल नहीं कराया जा सकेला। दाखिल करी जा नाम पाना री 1 सितंबर न जांच करी जावेला। नाम 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। 4 सितंबर न चुनाव चिन्ह जारी कराया जावेला। 14 सितंबर न वोटां री गिनती करी जावेला। ए बीच नगर निकाय चुनाव री गहमा गहमी बदबा लगी है। पार्षद ओहदा सारू स्थानीय सक्रियता जीत री संभावना और कार्यकर्ताओं री राय रा आधारों उम्मीदवारों रा नाम माथे विचार करो जा रियो है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रे अलावा कई ठोणा दूजा उम्मीदवारी मुकाबला रोमांचक बना रिया है। भारत आदिवासी पार्टी बाप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, बहुजन समाज पार्टी BSP, आम आदमी पार्टी आप, राष्ट्रीय लोकदल RLD री आप रासर वाला हलका माए सक्रियता बदवा लगी है। नई दिल्ली माए 12 और 13 सितंबर ने 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन राख्यो जावेला। इन माए ब्रिक्स रा सदस्य और भागीदार देशा रा नेता और न्योतोड़ा नुमाइंदा शामिल फैला। भारत री सदारत माइफे वनवाड़ा ई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रो मुद्दो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। इन दौरान ब्रिक्स देशां बीच सहयोग मजबूत करन रे बारा माए विचार करियो जावेला। भारत री सदारत माए ई साल देश माए 25 शहरां माए 350 मीटिंग राखी छी। भारत ब्रिक्स संगठन री शुरुआत करन वाला देशां माए शामिल है और साल 2012, 2016 और 2021 माए इन री सदारत कर चुक्यो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। आपसी प्रेम रो प्रतीक उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल हनुमानगढ़ माए शुरू फैला। लोक देवता गोगा जी री याद माए भरन वाला ई सालाना मेला माए मोटी तादाद माए जातरु शामिल फै है। भाणी हनुमानगढ़ खबर नवीस बतायो के मेला सारू मोटा पैमाना माथे तैयारियां करी छी है।
1: गोगा मेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र और बैरिकेटिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और अपराध रोकथाम के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नौर थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने, अवैध संपत्तियां फ्रीज करने तथा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: भाई बहन रा प्रेम रो पर्व राखी काल मनायो जावेला। सावनी पुन्यू रे मौके मनाई जावन वाली राखी न ध्यान राखता थका बाजारा माए रंग बिरंगी राखियां सागे पूजन सामग्री, मिठाई, श्रीफल और मेवानी खरीदी करी जा रही है। राखी रे मौके सलुम्बर और श्री गंगानगर जिला समेत कई ठोणा रक्षा का वचन कार्यक्रम राखी चियो। महिलावारी हिफाजत न समर्पित इन कार्यक्रम माए महिलावारा हक और साइबर हिफाजत रे बारा माए जानकारी दी रिजी। राजसमंद जिला रा कांकरोली माए रक्षाबंधन रा सिलसिला माए पुलिस हेलमेट बांटन रो खास अभियान चलायो। श्री गंगानगर जिला री सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माए छात्रावा नशो निकरण री राखी बांधर छात्रा ने नशो निकरण रो संकल्प दिलायो। मतदाता जागरूकता रा संदेश वाली राखियां ही लोगां ने खूब लुभा रही है। बाड़मेर जिला माए पाकिस्तान लाग्योड़ी सरहद माथे तैनात BSF रा जवाना माए राखी रो उमाव नजर आ रियो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े राखी री बधाई और शुभकामनावां दीनी है। वह प्रेम और विश्वास रा बंधन माए जुड़बार और संकल्प लेवन री अरज कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जनता ने राखी री बधाई और शुभकामनावां दीनी। काल सावन री पुन्यु रा दिन विश्व संस्कृत दिवस मनायो जावेला। ओ संस्कृत भाषा न बधावो देवन और इनरी समृद्ध विरासत न हेर रखन री कोशिश जुड़ियो है। संस्कृत दिवस री पहली वाली सिंजा आज रात 8 बजे प्रदेश माए आकाशवाणी रा सगला केंद्राओं राज्यपाल हरिभाव बागड़े रो शुभकामना संदेश प्रसारित करियो जावेला। जयपुर रा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा प्रोफेसर कौशलेंद्र दास कहो

0: कि संस्कृत भाषा देश री सभ्यता इतिहास रो प्रतीक है और संस्कृत दिवस भाषा साहित्य और सांस्कृतिक विरासत रो जश्न मनावे है।
1: वेदों से लेकर उपनिषदों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी से जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैत और जगत गुरु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत तक महाकवि कालिदास के काव्य धारा से लेकर चरक सुश्रुत के चिकित्सा विज्ञान तक संस्कृत में जीवन के हर पक्ष को शब्द काव्य और दृष्टि प्रदान की है। संस्कृत भारत की सीमाओं को लांघ कर तिब्बत चीन जावा इंडोनेशिया श्रीलंका अरब यूरोप म्यांमार नेपाल सभी देशों में संस्कृत लिखी जा रही है बोली जा रही है और संस्कृत के पुरातन ग्रंथों पर काम हो रहा है।
0: अरब मौसम राज्य में आवता एक सप्ताह रे दौरान बिरखा माय कमी रा आसार है। 4 सितंबर आर एस आर प्रदेश रा उगनी हल्का माय कच्छे कच्छे बिरखा उजु तेज फेवन री संभावना है। चौमासा री इन ऋतुमाए हालताएं सामान्य करीब 15% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग रे मुजब डीग भरतपुर बीकानेर और फलौदी माय चोखो में बरसियो। अजमेर अलवर कोटा और जोधपुर समेत 22 जिला माय सामान्य जदकर जयपुर सवाई माधोपुर उदयपुर और जैसलमेर समेत 15 जिला माय सामान्य कम पानी बरसियो। राज्य रा छोटा मोटा 693 मायू 439 बंधा थोड़ा घना भरिया है जदकर 53 बंधा पूरा फरकिया है। प्रदेश में वायरल बुखार रा मामला तेजी बधरिया है। जयपुरा डॉक्टर आर के जैन बतायो कि H1N1 इन्फ्लुएंजा रा लक्षण ही सामान्य बुखार मिलता जुलता वह है। इनरा असर सर्दी खांसी जुकाम और बुखार वह सके है। वह 2-3 दिन माए ठीक नी भेवन री सूरत माए मर्जी दवाई लेवन री बजाय डॉक्टर री राय लेवन री अरज की नी।
2: एक दूसरे से चलने वाली बीमारी है, सभी को जिनको जुकाम और ये हो मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथों का इन सबको बराबर साबुन से धोना चाहिए और दूसरे लोगों से जरा डिस्टेंस बना के बातचीत करें। वैसे इससे ज्यादा डेंजरस नहीं होता, दवा जो और इसकी तो दवाई तो सिम्टोमेटिक के हिसाब से ही चलती है, खांसी जुकाम बुखार उनके हिसाब से इलाज चलता है, पर वैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो होती नहीं है।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार 21वीं सदी रा भारत में नुआ जमाना री खेल व्यवस्था तैयार करनो तय कीनो। राज्य में 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू थियो। पहला दिन 900 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। उत्तर भारत रो नामी गोगा मेड़ी मेलो काल शुरू फैला और प्रदेश खनखर हल्का माय काल एक सप्ताह ताई बिरखा मंदी पड़ बारा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती में, कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि

0: किसी सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन बड़ा सगला श्रोताओं ने, सगला काश्तकार भाया ने आशाधा भाई का घना घना राम राम, और राजू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
3: राम राम आशा बहन और किसान वाणी कार्यक्रम सुन बड़ा सगला श्रोताओं ने राजू चौधरी को घनो घनो राम राम सा।
2: और देखो सर, रामा श्यामा के साथ साथ ही अब आज का किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप आया कर ला की अबार को जो टाइम छे वो टाइम कमाई ने अगर काश्तकार भाया ने तो देखो रोज ही आपका खेत में जाओ छे, निरीक्षण भी करे छे और करबा का सारा ही काम कर लेवे छे। पर अबार को जो टाइम छे वह यह छे की थोड़ी सी और सावचेती राखता हुआ खेता में काम करे, ज्या की फसल ने निरीक्षण करता हुआ ध्यान रखे की कोई कीड़ा बीमारी लागी छे ई टाइम, तो उसे अगर फसल ने बचा देवे तो वहां को उत्पादन और भी ज्यादा सुरक्षित हो सके छे।
3: बिल्कुल सर, और देखो आपने जो फसलना है जो पकाओ अवधि की ओर चल रही है और कुछ में देखो फूल अवस्था है, पल्ली अवस्था है, तो जो आपने दलहनी फसलना है या और आपने जो मूंगफली की फसल है या सोयाबीन की है,
2: सोयाबीन की जो फसल छे देखो अबार उमा भी संरक्षण पर ध्यान देनो घणो जरूरी छे। ज्या की आप बात करा बाद मक्का की फसल में बुट्टा बन रहे छे, दाणा आ भी रहे छे, आप और ने बाजार से लेर खा भी रहे छे, पर कई जगह आप देखो छो की वहां बुट्टा के अंदर कोई लटसी छे, दाणो खराब हो रहे छे, तो वह चीज पूरी फसल ने प्रभावित करे छे जिससे काश्तकार भाइयों को उत्पादन कम होवे छे। तो ध्यान दे वाली बात यही छे की आप ई टाइम जो रासायनिक छिड़काव बुरकाव करा छा फसल सुरक्षा के लिए उन्हें सावचेती से करा,
3: और नुकसान के साथ में फसल की जो गुणवत्ता है बिन भी खराब करे थे, तो देखो आपने जो फसल है सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त हो है, तो आपने समय रहता है फसल में निरीक्षण कर और आपने जो समझ में आ रही है तो भी साहब नहीं तो नजदीकी कृषि कार्यालय में कृषि जो पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, बिन दिखार भी के आपने जो बीमारी है कीड़ो है बिन को संरक्षण कार्य कर अपनी फसल ने निरोगी राख और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक अपन उत्पादन प्राप्त करना चाहिए।
2: राजू भाई ई टाइम आपने जो फलियां बाजार में आ रही छे उमें भी आप देखा छे कि कई बार तो बहुत ही हरी हरी और बहुत ही बढ़िया ताजा ताजा रहे छे और ई टाइम पूरी पकबा की अवस्था में छे, तो काश्तकार भाया यह भी ध्यान रखे कि जो पूरी तरह से पकबा की अवस्था में छे फलियां वाने तोड़ लो, क्योंकि ज्यादा पकबा से फलियां को दाणो निकल जावे छे और खेत में ही बिखर जावे छे जो कि मोटो आर्थिक नुकसान काश्तकार भाया ने हो सके छे।
3: बिल्कुल सर, देखो मौसम परिवर्तन की वजह या समस्या हो है तो तापमान ज्यादा है कम है और उसको फसल के अंदर आपने जो बीज में यान की वैरायटी भी आ जाओ जो पड़ी है बस जल्दी पक जाओ, तो जल्दी पक जाओ तो बाद धूप कमाए चिट्टक कर बाका दाना बिखर जाओ, तो इसके लिए आपन देखो अगर आवश्यक है तो आप सुविधा हो सके तो आप देखो फसल की जो पड़ी है वन तोड़ सका, नहीं तो एक साथ अगर आप कटाई करवो चाहो तो एक साथ जब फसल पूरी पक जाए तो एक साथ कटाई कर और बिन भंडार घर पर ला और बिन थ्रेसिंग करा बीज ना निकाल लेना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो देखो सर यही छोटी छोटी बातें छे जहाँ को अगर ध्यान में रखे ना तो आपा काश्तकार भाया आपकी मेहनत को पूरो फायदो ले सके छे, और करनो इतो ही छे कि आपने समय ने ध्यान में रखता हुआ मौसम ने ध्यान में रखता हुआ ये सारा काम कर लेना छे। और जब बात समय की आवे छे तो राजू भाई अब समय हो रहे छे किसान वाणी कार्यक्रम में जो आप विषय विशेषज्ञ ने बुलावा छा और आपने भाई लोगों के लिए अपना काश्तकार भाइयों के लिए नई नई और ज्ञानवर्धक जो जानकारी वहां तक पहुंचावा छा उनको, तो आपने अनीता बहन भी स्टूडियो में आ चुके छे विषय विशेषज्ञ ने साथ लिया छे, तो आउसा सगड़ा ही मिलर सुना वहां की यह बातचीत।
4: किसान वाणी सुनबा वाला सभी किसान भाइयों ने अनीता की घनी घनी राम राम सा। किसान वाणी में मैं आपके लिए नई नई जानकारियां ले रहा था। ये कड़ी में ही आज मैं आपके लिए ले रहा था क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं की पहचान और वहां का सुधार का उपाय। ये विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने कार्यक्रम में पधारा छे डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, आप मृदा वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोगनेर में आप पदस्थापित छे। आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है श्याम सुंदर जी। राम राम सा।
5: राम राम मैडम।
4: तो जी है कि आज आप बात करा ला क्षारीय और लवणीय मृदाओं की पहचान और वहां का सुधार का उपाय का बारे में, तो सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर जी आपसे मैं यही जानवो चाहला भाई क्षारीय और लवणीय माटी काई होवे छे ई का बारे में किसान भाई ने बताओ सा।
5: तो एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, आदमी उसका निर्माण नहीं कर सकता
4: जी।
5: ये प्राकृतिक स्रोत है और एक सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों साल लग जाते हैं।

0: लेकिन लापरवाही की वजह से चाहे वो आदमी की हो चाहे कोई पॉल्यूशन मैटर हो, हम उसको एक ही सीजन में नष्ट कर देते हैं
1: जी।
0: और जैसे जनसंख्या बढ़ती है इस तरह इसको ना तो फैक्ट्री में बढ़ा सकते हैं ना रबड़ की तरह खींच सकते हैं। तो जैसी भी मृदा जो है जैसी उसमें ही हमको प्रबंधन करके हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसको उसमें भोजन उपलब्ध कराना है। तो उसी क्रम में हम क्षारीय मृदाओं के प्रबंधन के बारे में और उनके उपाय और उनकी पहचान के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे
1: जी।
0: जहां तक लवणीय मृदाओं की बात है, लवणीय मृदाएं वो मृदाएं होती है जिनमें घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और वो पौधे की बढ़वार के साथ साथ उनके उत्पादन पर भी प्रभाव डालती है। जैसे आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो किशमिश होता है और किशमिश को अगर आप चाशनी के घोल में डाल दो तो वो सिकुड़ जाता है
1: जी।
0: तो इसी तरह जब मृदा में लवण मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पानी मृदा से पौधे की तरफ जाने की बजाय पौधे से मृदा की तरफ आ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है और उसका उत्पादन खत्म हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये लवणीय मृदाएं। दूसरी क्षारीय होती है, इनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उसकी वजह से भौतिक संरचना होती है वो नष्ट हो जाती है और उसमें न तो पानी का संचार हो पाता है न वायु का हो पाता है। तो उनको क्षारीय मृदाएं कहते हैं, वो भी फसल के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
1: तो सर यह जानना चाहना भाई, क्षारीय मृदा में जी आप बताया भाई सोडियम की ज्यादा प्रभाव है जाओगे तो इनको फसल पर काय प्रभाव पड़े?
0: क्षारीय मृदाओं में सोडियम की बहुतायत होते ही उसकी जो भौतिक संरचना होती है वो खराब हो जाती है, एक वो नष्ट भी हो जाती है और उसके कारण पानी का जमाव जमीन पर हो जाता है, पानी अंदर की तरफ जा नहीं पाता है
1: जी।
0: न तो उसमें वायु का संचार हो पाता है न पानी का उसमें संचार हो पाता है। उसकी वजह से जो उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं
1: जी
0: उनको हवा नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से नष्ट हो जाते हैं और जो सारा जो प्रक्रिया है जो पोषक तत्व प्रबंधन की होती है जो उसको उपलब्ध पौधे के लिए जो माइक्रोब्स करते हैं सूक्ष्म जीव के वो सभी बंद हो जाती है और सारी उसकी फसलों की पैदावार कम हो जाती है और कई बार तो खत्म से हो जाती है
1: जी।
0: तो ये उनका प्रभाव पड़ता है
1: जी। पर बात यह आवश्यक है कि भाई अपना किसान भाई मिट्टी की क्या पहचान करे कि वह क्षारीय माटी छे या लवणीय माटी छे?
0: लवणीय और क्षारीय मृदाओं के यहाँ तो पहचान का प्रश्न है। इसका सबसे विश्वसनीय तरीका तो मृदा परीक्षण ही है। फिर भी किसान चाहे तो लवणीय मृदाओं की पहचान के लिए सफेद साग एक लेयर जम जाती है, परत जम जाती है खेत में
1: जी।
0: साथ में बीजों का उसमें बोते हैं तो उनका अंकुरण बहुत कम हो पाता है, साथ में उनकी वृद्धि भी कम हो पाती है और जो पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के किनारे सूख जाते हैं, बोले दूसरे टाइप हो जाते हैं, सूख जाते हैं और फसलों का भी असमान ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इस तरह हम उसको पहचान कर सकते हैं, लेकिन विश्वसनीय तरीका तो मृदा का परीक्षण ही है। विश्वसनीय लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में उसका टेस्ट कराएं और वही उसको आपको पहचान करके उसके बारे में बताएं।
1: तो सर अब जी यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षारीय और लवणीय दवा की पहचान और सुधार का उपाय के बारे में। तो अब बात यह आवश्यक है कि भाई जी किसान भाई की अगर क्षारीय भूमि है तो भी परेशानी है, लवणीय भूमि है तो भी परेशानी है, तो ऐसी भूमि की सुधार के लिए सबसे पहले किसान भाई काय उपाय अपना सके छे?
0: इसमें जब परीक्षण के लिए जब मृदा का नमूना हम लेके जाते हैं तो लवणीय मृदाओं के कुछ अलग पैरामीटर है जो उनको उसमें परिभाषित करते हैं और क्षारीय मृदाओं के अलग है। तो लवणीय मृदाओं में क्या होता है कि जो सोल्युबल जो घुलनशील लवण होते हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो उनको प्रबंधन के लिए उसमें किसी सुधारक की जरूरत नहीं होती है। उसको जल निकास से या अच्छे जो गुणवत्ता का पानी है उसको देके जो फसल का जो रूट जोन होता है जड़ का क्षेत्र होता है उससे नीचे उनको प्रकोलेट कर देते हैं, यानी उनको नीचे अंदर समाहित कर देते हैं, तो उससे उसका प्रबंधन हो जाता है
1: जी।
0: ये तो हम लवणीय मृदा की बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर पानी रुकता है तो उसका जो नालियां बना के उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि लवण की मात्रा उसमें निकल जाए और भविष्य में भी उसमें जमा नहीं हो
1: जी।
0: जहां तक क्षारीय मृदाओं की बात है तो उसमें जो सोडियम की अधिक मात्रा होती है उसको प्रबंधन के लिए उसमें जिप्सम उसमें डालते हैं। तो जिप्सम क्या करता है कि जो सोडियम उसमें अधिकता है उसको कम करके उसका सुधार कर देता है। साथ में जिप्सम एक सल्फर भी तत्व होता है उसको उपलब्ध कराता है तो उसकी संरचना सुधरती है। संरचना के साथ साथ सुधरेगी तो पानी का जमाव भी नहीं होगा और अंदर उसमें जिस चल जाएगा पानी और उसका सब प्रबंधन भी हो जाएगा। तो ये उस सुधार की बात है
1: जी।
0: इसके साथ में हम कुछ दूसरे जो अपने परंपरागत स्रोत है उनको काम में रखते हैं, जैसे एफआईएम है जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, यानी किसान अपने खेत पे ही तैयार करता है देसी खाद जिसको बोलते हैं गोबरी खाद, उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा उपाय है हरी खाद का। हरी खाद में क्या करते हैं कि जैसे सनई ढेंचा ग्वार

0: या कोई और कोई मतलब बीज पत्र दू बीज पत्री पौधे हैं उनको बरसात के टाइम पर कुछ अधिक बीज की मात्रा डाल के 30 से 50 किलो पर हेक्टर के हिसाब से उसमें बुआई करके और जब वो फूल आने से जस्ट पहले थोड़ा सा पहले उनको जमीन में पलट देते हैं। ये बरसात का सीजन बरसात हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो पानी देके उनको सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे उसका पीएच भी कम आता है, सोडियम की मात्रा भी सुधरती है और उसकी भौतिक दशा भी अच्छी हो जाती है और अंकुरण भी अच्छा होगा और पानी का जो जमाव होता था क्षारीय मृदा वो भी नहीं होगा। तो ये आजकल तो किसान थोड़ा भूल गया है इसको, लेकिन अगर इसको साल दो साल में करता रहे तो निश्चित रूप से उसका सुधार हो जाएगा और अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा।
1: जी आप बताया क्षारीय मिट्टी में जिप्सम डालवो में सुधार हो जाए तो कहीं लवणीय माटी में भी जिप्सम डालवो जरूरी है?
0: लवणीय मिट्टी में जिप्सम का डालना जरूरी नहीं होता है, ये समस्या के रूप और घुलनशील लवणों के मात्रा पर निर्भर करता है। पर ज्यादातर लवणीय मृदाओं में जल निकास से उसका प्रबंधन हो जाता है
1: जी।
0: पर जल निकास करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो जल है वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पहले से ही लवणीय है और उससे आप करोगे तो आपको सुधारने के बजाय और ज्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अच्छी गुणवत्ता का पानी लें और उसमें भर दें, उसमें अपने सीड बेड बना के क्यारा बना के, और वो पानी उसमें धीरे धीरे जब जमीन के साथ जाएगा तो साथ में लवण को घुलित करके और जो रूट जोन है जो जड़ क्षेत्र है फसल का उसके नीचे ले जाएगा और वहां से साल्ट जैसे जाएंगे लवणीय जैसे जाएंगे और फिर उसका फसल का प्रबंधन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से लवणीय भूमि का प्रबंधन किया जाता है। आपकी बार्ल है जिसको जो बोलते हैं, गेहूं है, सरसों है, कपास है, कुछ चारे की फसलें हैं, इस तरह के रिजगा ले तो इस तरह की फसल लेगा तो इन पे थोड़ी लवणीयता और क्षारीयता का प्रभाव कम आता है। इसके साथ में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो क्षेत्र वाइज पहले से रिकमेंडेड है तो इनमें भी वही लें
1: जी,
0: किस्में लें ताकि उसको ज्यादा फायदा हो। सब्जी की बात करें तो एक जोबनेर से एक वैरायटी निकली हुई है ज्वाला जोबनेर पालक की, वो बहुत अच्छी वैरायटी है, कई फार्मर वहां करते भी हैं और उनका अच्छा प्रोडक्शन होता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लवणा की अधिक मात्रा में भी अच्छा पैदावार देती है
1: जी।
0: उसके साथ ही अगर हम फल की बात करें तो अनार एक ऐसा है कि वो काफी बहुत अधिक लवणता को भी वो सहन कर लेता है। अनार को बो सकते हैं, साथ में आपका बेल पत्र है, साथ में आपका ये आंवला है, आपका करौंदा है, इस तरह के जो फल हैं ये इस तरह की मृदा हो जाते हैं और किसान को मतलब अच्छा उपज भी देते हैं और उनमें ज्यादा लागत भी नहीं आती।
1: पर आपने किसान बहाने क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी किस्मों को ध्यान रखना,
0: बिल्कुल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया गेहूं लेना तो गेहूं में भी दुनिया भरी किस्म है, लेकिन आपके क्षेत्र के लिए कौन सी रिकमेंडेड है
1: जी जी,
0: तो पहले से वैज्ञानिकों की है तो आप वो करोगे तो फायदा ज्यादा होगा आपको। इसी तरह जो की भी है, कपास की भी है, चारे की भी है, तो उसी तरह का विशेषज्ञ से बात करके या जो इस कार्यक्रम आते रहते हैं उनके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। तो सर अब आगे बात यह करा भाई, कहीं फसल चक्र अपना किसान भाई अगर अपनावे तो कहीं असी मृदावा में जो भी लाभदायक रह सके थे वहाँ की फसल के लिए?
0: जी हाँ, फसल चक्र ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान को फसल को बदल बदल कर बोना पड़ता है। जैसे एक बीज पत्री गेहूं जैसे बो दिया तो अगली बार उसको द्वि बीज पत्री बोलना चाहिए जी, जो ताकि कि वो जो अलग अलग परत है भूमि की उससे वो पोषक तत्व प्राप्त कर ले। और दूसरा क्या होता है कि जैसे गेहूं है ये एक बीज पत्री है तो इतना ये न्यूट्रिशन या उसमें ऐड नहीं करते जितना लेग्यूमिनस क्रॉप जिसको बोलते हैं द्वि बीज पत्री है, चना है, अरहर है, मूंग है, ये उसमें ज्यादा नाइट्रोजन और अन्य तत्व भी उसमें ऐड करती है। तो फसल चक्र का फायदा ये होता है कि बदल बदल कर बोने से उसकी उर्वरता बनी रहती है और इस तरह की मृदाओं में तो तौर से फार्मर को करना ही चाहिए और वो अधिक फायदा उसे उठा सकता है
1: जी। देखो सा अगर कोई भी फसल बोगा तो उन्हें उर्वरक की जरूरत तो पड़े ही छे, तो असी मृदावा में उर्वरक को प्रयोग अपना किसान भाई क्यान करे?
0: किसान भाई सबसे पहले मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरक की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ठीक है सामने वाला दो कट्टे डाल रहा है तो मैं चार कट्टे डालू, ये गलत प्रणाली है, उससे आपको आर्थिक रूप से नुकसान होता है और कोई विशेष पैदावार आपकी बढ़ती। साथ में मृदा परीक्षण की रिपोर्ट का जरूर ध्यान रखें। संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूर अपनाएं, उससे क्या है कि आपकी लागत भी कम होगी और आपका ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा और आपकी अच्छी गुणवत्ता की पैदावार होगी।
1: तो सर जी अपना किसान भाई अगर वहाँ की साधारण भूमि है तो उनमें खाद बीज को तो वन उन हिसाब से ही काम में लेनी चाहिए, पर अगर वहाँ की भूमि क्षारीय है या लवणीय है तो असी भूमि में बीज बोती टाइम आपने जो किसान भाई है वहाँ की भूमि ई तरीका की है तो वन कसी कसी बातों को और कसी सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए?
0: किसान भाइयों लवणीय भूमि में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो अंकुरण की रहती है। तो ऐसी स्थिति में तो किसान को सतर्क हो जाना चाहिए और हमेशा प्रमाणित बीज है अच्छी दुकान से और अच्छी कंपनी

0: होनी चाहिए। और मैं तो साथ में कहूंगा कि कई बार किसान को वो दुकानदार बावड़ा बना देता है, बिल्कुल बना देता है, उसको उसका बिल नहीं देता है, तो वो जब पैसे हम पूरे दे रहे तो बिल प्राप्त करे, तो बिल प्राप्त करने के बाद वो आपसे किसी तरह की वो धोखाबाजी नहीं करेगा और आपको प्रमाणित बीज मिलेगा, तो उससे उसका अंकुरण की क्षमता बढ़ेगी और आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। साथ में बुआई के समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये क्षारीय और लवणीय मृदा ऐसी है कि समय निकल जाने के बाद उसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लवण ऊपर आ जाता है, तो अंकुरण में बहुत भी समस्या आ जाती है, तो उसकी संख्या जो संख्या है पौधों की वो कम हो जाती है। इसलिए समय का ध्यान रखें, पहले से तैयारी कर लें, बीज ला के खेत को तैयार कर लें, कोई उपचार करना है तो उसको पहले ला के रख लें, तो समय का विशेष ध्यान रखें और बस प्रमाणित बीज प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा।
1: जहाँ किसान भाया का खेत क्षारीय या लवणीय है तो कहीं वहाँ का खेत में समतल राखू भी जरूरी है, उनको भी कोई फर्क पड़े छे?
0: बिल्कुल सर, एक ऐसा प्रश्न है जो ये वैसे तो किसान को खुद को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानकारी बता दूं कि अगर समतल खेत है तो पानी का जमाव नहीं होगा उसमें।
1: अच्छा।
0: और लवणीय जो मृदाएं बनती है उनमें पानी के जमाव होने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका खेत ऊबर खाबड़ है तो कहीं पानी भरेगा नहीं, कहीं भर जाएगा, और फिर वो जब सूखेगा ना लंबे समय बाद तो वहीं वो लवण छोड़ देगा और पानी उड़ जाएगा, तो दोबारा फिर आपकी भूमि क्षारीय लवणीय बन जाएगी। तो कोशिश ये करें कि समतल होना चाहिए, समतल होना चाहिए भूमि, और समतल भूमि का प्रयोग करें।
1: खरपतवार नियंत्रण को काई महत्व जी का मैं
0: ऐसा है जी, ये सब जानते हैं कि खरपतवार अपनी जीवनी बच्चीवन बचाने के लिए जो फसल होती है उससे वो प्रतिस्पर्धा करता है, चाहे वो पोषक तत्व के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे खाद के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो। तो जब प्राइमरी स्टेज में यानी कि जब अंकुरण शुरू होने लगे उस समय खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मृदाएं इस तरह की होती है उसमें जो फसल होती है चाहे किसी भी तरह की फसल हो वो तनाव में वैसे ही रहती है, चाहे वो पोषक तत्व के लिए हो चाहे वो पानी के लिए हो, तो अगर उनके साथ इनका कंपटीशन रहेगा खरपतवारों का तो निश्चित रूप से पोषक तत्व कम मिलेंगी और पैदावार आपको कम मिलेगी। तो खरपतवार का ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखते हुए प्रारंभ में ही उनको नष्ट कर देना चाहिए।
1: जी, हरी खाद को क्षारीय मृदा सुधार में भी कई महत्व है?
0: बिल्कुल, हरी खाद का मैंने जैसे बताया कि हरी खाद एक ऐसी खाद है जो कम खर्चे में बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूंगा, ढेंचा जैसे सामान्य है, गंवार है, आपको और भी लेग्यूमस फसल वो भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत आयत में तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को ढेंचा या गंवार ले, वो थोड़ी ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करती है। तो बरसात में आपकी पहले बरसात होते ही उसको बुआई कर दे और थोड़ी उसकी बीज की मात्रा थोड़ी सी 10% 20% ज्यादा रखे, ये जनरली 30 से 50 किलो तक रखते हैं एक हेक्टर के लिए, और मुझे बुआई कर दें, और बीज की मात्रा ज्यादा रखने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा फूलेज बने, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति हो, ज्यादा से ज्यादा पौधे हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे उसमें पोषक तत्व उपलब्ध करा सके। जैसे ही फसल बढ़े और फूल आने से पहले नरम नरम हो उनको पलटने वाले हल से पलट दे।
1: अच्छा।
0: ताकि वो जमीन दब जाए और उनका सड़ाव तो पूर्ण रूप से हो जाए, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर बरसात नहीं होती है तो उसमें दिमाग लग जाती है। अच्छा। तो या पानी दे, बरसात हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पानी दे दे ताकि उसका पूर्ण उसका सड़न हो जाए और पौधों को उसकी जो अच्छी खाद है वो मिल जाए। वो क्या है कि पोषक तत्व तो प्रदान करती है, साथ में इसका पीएच भी कम करती है इस तरह की मृदाओं का, और सोडियम की मात्रा को भी कम करती है, वो कुछ जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, सड़न होता है, उस समय विभिन्न प्रकार के वो एसिड अम्ल है ना वो सीक्रेट करती है, तो वो सब पीएच को और बाकी जो हानिकारक पैरामीटर है उनको कम करती है, जैसे आपका सोडियम है, आपका पीएच है, ईसी है, इनको सब कम करके और न्यूट्रल अवस्था में ले आती है, उदासीन अवस्था में ले आती है और फसल को अच्छा पोषक तत्व प्रदान करती है, भूमि आपकी उपजाऊ बन जाती है।
1: कुछ छोटा छोटा उपाय चाहे जो करके अपना किसान भाई जहाँ किसान भाइयों की भूमि क्षारीय और लवणीय है वहाँ की मृदाओं की वे पहचान कर सके जाए, और छोटा छोटा उपाय अपना भूमि में सुधार करके चौकी उपज पा सके जाए, और जब चौकी उपज होली तो उनको मुनाफो भी चौको होलो। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा मृदा वैज्ञानिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोगनेर में आप पदस्थापित छो, आप कार्यक्रम में पधारा, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम साहब।
2: अनिता जी ने बहुत ही चौकी जानकारी दवाई और जानकारी दिया आपने कृषि विशेषज्ञ श्याम सुंदर जी शर्मा जो को विषय रियो सारी और लवणीय मृदा को प्रबंधन की प्रकार करा और आपने जो को फसल उत्पादन है दिन की हिसाब वापा बढ़ा सका।
3: और राजू भाई अब कार्यक्रम में टाइम छे मनोरंजन को भी, तो मनोरंजन भी काश्तकार भाइयों को भी करावला, विषय विशेषज्ञ ने भी गीत सुनावला, पर छोटा सा अंतराल के बाद।
4: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का,
5: तो चला बोल रहे
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं।

0: तक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा खत्म और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है।

0: और उम्मीद छे कि यो गीत सबने बहुत चोखो भी लागे होलो और आपने चोखो लागे या कोने या बताओ सर।
1: बहुत चोखो लागे सर।
0: अब देखो सर चोखो लागे तो चोखो से एक काम आपने और करनी चाहिए कि अबार को जी को जो मौसम छे जो कि अपना काश्तकार बयान है फसल का उत्पादन ने सीधो सीधो प्रभावित करे छे थोड़ी सी जानकारी वा भी दे दो सर।
1: बिल्कुल सर। देखो अब हम पूरा राजस्थान प्रदेश की बात करा तो देखो काफी जिलों में देखो बरसात हो रही है, ज्यादा भी हो रही है कम भी हो रही है। तो देखो ज्यादा हो रही है देखो जल जो पानी है बरसात है तो दिनों सावधानी भी आंकनी चाहिए और कड़े है देखो आपने कम हो रही है तो देखो फसलों की मांग के अनुसार बम सिंचाई भी करनी चाहिए। तो मौसम की बात करें आप आज का सामान्य देखो तापमान रियो अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम रियो 26 डिग्री सेल्सियस और देखो बादल वाला मौसम बने रही और कड़े कड़े बूंदाबांदी और हल्की बरसात की भी संभावना बताई गई।
0: और काश्तकार भाया अभी मौसम की ताजा जानकारी के साथ ही स्टूडियो की घड़ी अब कह रही है कि आज कुछ को कार्यक्रम से किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे हैं तो श्रोतावा दिराव आज्ञा आशा ने
1: और राजू ने
0: चालार करा
1: राम राम, राम, राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: चुने कर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: चुने कर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगळा श्रोतावाने आशा धाबाई का घना

0: राम राम राजू भाई, आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
1: राम राम सा बहन और खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा श्रोताओं ने राजू चौधरी है घना घना राम राम सा।
0: अब देखो सा, गुरुवार छे और गुरुवार के दिन तो आपनो फोन इन कार्यक्रम रहे छे, जी कमाई ने काश्तकार भाया फोन कर सके छे और स्टूडियो में जो विषय विशेषज्ञ पधारे छे वहां से स्वयं बात कर आपके सवालों को जवाब, आपकी समस्याओं को समाधान भी ले सके छे। स्टूडियो में आज भी विशेषज्ञ पधार चुके छे तो ओळखाण वाकी करा दिया। आप छे डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, प्राध्यापक कृषि, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में बिराजे छे। कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: अर जिया की गुरुवार का दिन फोन इन कार्यक्रम हुए छे, जी के लिए चार फोन लाइना आप स्टूडियो की अपना श्रोताओं के लिए खोल रखा छे, जी पे भी फोन कर सके छे और आपकी समस्याओं को समाधान सीधा विशेषज्ञ से बात कर पा सके छे। तो एक बार फोन नंबर वाने बता देवा छे, स्टूडियो का जो चार फोन लाइना छे वहां का नंबर छे 2200600, 2200700, 2200800 और एक और चौथी लाइन छे उसका नंबर छे 2366477। जयपुर को एसटीडी कोड 0141 आपने जरूर से लगा लेनी छे। और जैसा कि हमेशा ही कहवा छा, आज भी कहवाना कि कुछ एक बात छे जाको ध्यान जरूर से रखनी चाहिए, जो कि राखे और बात करे तो फोन इन कार्यक्रम सुगमता से संपन्न हो जावे। सबसे पहली बात तो यह कि सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा जो सवाल छे वे ही आप विशेषज्ञ से पूछे और जब भी बात करें पहले आपको नाम बतावे, आपकी जगह को नाम बतावे, फिर प्रश्न पूछे और जब आप बात करो तो थोड़ा सा यह ध्यान रखो कि रेडियो सेट से थोड़ा दूर आर बात करो ताकि स्पष्ट सुनाई दे सके कि आपकी काई समस्या छे और जो विशेषज्ञ आपने बतावे उनको भी आप स्पष्ट सुनर जवाब पा सको। और जिया की विशेषज्ञ पधार ही चुके छे तो क्यों ने शुरुआत करा कि सबसे पहले काई सवाल पूछे जावे।
1: बिल्कुल सर, तो अगला सवाल पूछा कि मूंग की जो फसल है पिछड़ा मुझे रोग है तो देखो नियंत्रण के प्रकार का।
2: देखो अभी जो बारिश को टाइम चल रहा है देखिए भाई, खासतौर से दलहनी फसलों के अंदर विषाणु रोग का प्रकोप होता है जिनमें पत्तियां पीली पड़ जाती है
0: जी।
2: तो ये विषाणु रोग जो रस चूसने वाले कीट है कीट होते हैं उनके माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रसार करते हैं, फैलते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिन खेतों में ये पिचसिरा मोजेक के लक्षण दिखाई देते हैं वहां पे जहां रोग के लक्षण दिखते ही उन रोगग्रस्त पौधों को सबसे पहले उखाड़े और उसके बाद में अन्य पौधों को रोग से बचाने के लिए हमें कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए हम क्विनोलफॉस नामक कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमिथोइड 30 cc दवा का इस्तेमाल एक मिलीलीटर एक लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई यदि ध्यान देंगे तो ये दलहनी फसलों में जो पिचसिरा मोजेक रोग होता है उससे अपनी फसल को बचा पाएंगे। खासतौर से ये भी ध्यान रखना कि किसान भाई जहां दलहनी फसल लगाते हैं उसके आसपास में मेड़ पे जो खरपतवार होते हैं उन्हीं में सबसे पहले ये विषाणु रोग संक्रमित खरपतवार के माध्यम से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जो खेत के अंदर रोग को लेकर आते हैं, तो हमें आसपास में साफ सफाई रखनी है, खरपतवारों को नष्ट करना है और रोग का लक्षण दिखाई देते ही फसल को बचाने के लिए उचित उपाय अपन को करना है
0: जी। काश्तकार भैया, चार फोन लाइन आपके लिए खोल रखी छे, एक बार नंबर फेर से आपने बता दू छू जी पर आप फोन कर सको छो और विषय विशेषज्ञ से सीधी बात कर सको छो 2200600, 2200700, 2200800 और 2366477। अब शेखावत साहब आपसे पूछबो चावना कि तिनकी जो फसल छे उनका मायने अगर चाचा रोग को प्रकोप हो जावे तो काश्तकार भैया आपकी फसल ने बचावा के लिए काई करे।
2: सबसे पहले तो किसान भाई अपनी फसल का निरीक्षण करे और देखे कि फसल में चाचा रोग का प्रकोप हुआ है क्या। तो चाचा रोग के लक्षण ऐसा लगता है जैसे पत्तों के ऊपर कोई सफेद जो चूर्ण पाउडर है वो किसी ने छिड़क दिया हो, भुरक दिया हो, उस प्रकार के लक्षण दिखने पर, क्योंकि चाचा रोग का जब पत्तियों पर इस प्रकार का प्रकोप हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है और पौधे पर इसमें जो हरित लवक है वो नष्ट होता है जिसके कारण से पौधे में जो भोजन बनने की प्रक्रिया है उसमें रुकावट आती है और जिसका परिणाम होता है कि जो फल लगते हैं वो छोटे बनेंगे, दाने कम बनेंगे और उत्पादन में नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को जब ये लक्षण अच्छे से लक्षण का पता लग जाए तो इससे बचने के लिए हम 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति किलो एक हेक्टर के हिसाब से और या हम घुलनशील गंधक है जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घुलनशील गंधक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: हैं एक एक्टर के हिसाब से।
1: जी हेलो।
2: हाँ जी,
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कौन बोल रहा है, जो नाम बताओ सर।
2: राम सिंह चौहान शाहपुर से बोल रही हूँ मैं।
1: जी
2: आज तो मैं कहीं से भी जिया बोलती हूँ यार।
3: अच्छा,
2: तो जिया जिया कहीं की खीरे के इस तरह हो गई, खीरे के बाद वो भरी नहीं थी
0: घिया।
2: हाँ जी,
0: घिया की बढ़वार नहीं हो रही है।
2: हाँ, बनी नहीं थी वो, जैसे खीरा है ना, खीरा की तरह भूखे लगे, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा।
0: अब घिया के अंदर है ना, जो छोटी छोटी आपको लगता है छोटी छोटी घिया बन के खिल रही है वापिस।
2: हाँ,
0: इसमें क्या होता है कि यदि आपने कम बेले लगाई है तो इसमें तो जो परागकण की जो समस्या होती है, इसमें जो मादा फूल और नर फूल का जो जो परागकण की क्रिया होती है, यदि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खी है तो उसमें परागकण की क्रिया हो जाती है, और यदि आपने एक दो बेल लगाई तो उसमें परागकण की क्रिया में कठिनाई होती है, जिसके कारण से वो छोटा फल रह के गिर जाता है।
2: अच्छा
3: अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि जो नींबू को अपना पेड़ है बाग है, तो बिक मायने जो नींबू में कैंकर रोग हो जाए तो बिक और नियंत्रण की प्रकार हो गए।
0: बार बरसात के जो समय है, बरसात के समय में।
3: हेलो
4: हेलो, खेती बाड़ी में नमस्कार।
3: खेती बाड़ी में नमस्कार जी, कड़ों बात कर रहे हो, कहीं जानकारी से पूछ रहे हो।
4: मैं भवनलाल जोर बोल रहा हूँ, ग्राम गोटड़ी तहसील मदराना से।
3: बताओ साहब, कहीं जानकारी दे पूछा खेती बाड़ी।
4: मेरी समझ ये है कि मेरे 100-150 ये जो पपीता है ना, इसके पेड़ है, इसमें से कुछ पेड़ आते हैं मतलब उनके जो तने है ना।
3: हाँ।
4: वो क्या सिकुड़ के जमीन की नीचे की तरफ जा रहे, ऊपर बढ़वार नहीं हो रही है।
0: तने के पास में से पास में कोई ऐसे गलन सी हो रही है तने के पास में नीचे।
4: हाँ, गलन हो के और गलन हो के जमीन के नीचे की तरफ झुक झुक रहे हैं वो पत्ते। 50-60 पेड़ है उनके हो गए और 50-60 तो सही है।
0: तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो जो जो आपने पपीते के पेड़ लगा रखे हैं उसमें आवश्यकता से ज्यादा पानी नहीं डालना है। यदि आप आवश्यकता से ज्यादा पानी देंगे तो उसमें जो एक फफूंद होती है पीथियम फाइटोप्थोरा, उस फंगस का संक्रमण हो जाता है जो जमीन के पास वाला जो हिस्सा होता है उसमें। और दूसरी बात है कि जो आप थावले बनाते हो उसमें कोशिश करो कि जो तने के आसपास की जो मिट्टी है वो थोड़ी सूखी रहे, और उसके बाद में उसके चारों ओर जो आप पानी दो डायरेक्ट जो सीधा उसके पानी संपर्क में नहीं आए, और पानी एक नियमित अंतराल से दो, आवश्यकता से ज्यादा पानी नहीं देना है। और खासतौर से अभी बरसात के टाइम में यदि पानी वहां पे एकत्रित होता है तो उसमें निकास की आप उचित व्यवस्था करें। कोशिश करें कि ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसका इस्तेमाल करें तो ये बीमारी नहीं होगी। पपीते में दो ही तरह की जो बीमारी होती है जो काफी नुकसान पहुंचाती है, एक तो ये जिसको हम फूट रोट बोलते हैं, जो पाद गलन रोग जिसको आप बोल रहे हैं वो, और एक विषाणु बीमारी होती है जिसके कारण से पपीते में नुकसान पहुंचता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। और अभी यदि खेत में हो रहा है आपका तो उसमें आप इसके लिए जो एक दवाई आती है रिडोमिल MZ या एप्रोन 35 SD, ये दवाई आती है, उन दवाई का घोल बना के और उन जो थावले उसके अंदर डाले, एक ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जहां जहां पे रोग हो रहा है उसमें घोल बना के डाले, लगभग 10-15 से 20 लीटर पानी ये अजीब पपीता जो एक दो साल का हो गया उसमें डाले।
1: धन्यवाद सर, फोन कर बताई। राम राम सर।
2: राम राम जी,
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कौन बोल रहा है, नाम बताओ आपको।
2: नाम जी मेरे राजेंद्र यादव है जी।
1: जी यादव जी, किसी जगह से बात कर रहे हो।
2: मैं जी गांव रायपुर झुंझुनू से जी।
1: काई पूछना चाहो छो आज।
2: हाँ जी
1: बताओ सा, काई पूछला।
2: काई पूछलो है जी, मारे जी 60 पेड़ है जी नींबू के।
1: अच्छा,
2: तो उसमें वो फल ये मतलब फूल फाल के कब आएंगे कब नहीं आएंगे जी, वो बड़े बड़े हो गए जी, 10-10, 12-12 फुट के पेड़ हो गए जी।
1: बताओ सा,
0: नींबू के अंदर वैसे चार साल के जो नींबू होते हैं जो उनमें फल आ जाते हैं। अब आपने कौन सी नर्सरी से लिए, आपके फल कितने जो पेड़ है कितनी उम्र के, उसके हिसाब से वो देखा जाएगा। कितने साल के पेड़ है आपके
2: तेल जी? मेरा तो ये टाइम ये 34 साल लग रही है जी।
0: हाँ, तो अब अगले साल तक इसमें आ जाएंगे। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ नींबू हम एक अच्छी नर्सरी से जहाँ विश्वसनीय नर्सरी है वहां से पौधे पेड़ लगाना चाहिए, और उसकी आप उचित देखभाल।
2: वो तो जी लग गए तो लग गए।
0: हाँ, उसकी उचित देखभाल करो। अब पौधे की जो प्रकृति है ना उसके हिसाब से, उसकी जो किस्म है उसके हिसाब से ये फल देंगे। कोई पौधा 4 साल में दे देता है, कोई 5 साल में दे देता है, तो अब जिस प्रकार की उसकी किस्म है उसके हिसाब से ये फल दे देंगे। आप तो उसकी उचित देखभाल करो, समय समय पर उसमें पानी दो, कीट पतंगों को यदि कोई प्रकोप हो तो उसके लिए दवा का इस्तेमाल करो, और उस

0: थावलों की निराई गुड़ाई करो तो फलदार पौधों से अच्छा फल उत्पादन होगा।
1: और जी अमरूद के तो अभी जो फल आ रहे हैं वही अभी वो उनको झाड़े का अभी रहने दे।
0: नहीं इस समय तो अमरूद के फल है उसमें अभी अभी आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसमें, अभी अभी जो जो फ्रूट फ्लाई है उसका प्रकोप ज्यादा होता है, तो आप अगली अगला जो फलदार जो सीजन है उसमें आप लोगों तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
2: हेलो
3: हेलो नमस्कार सर।
2: नमस्कार जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है सर।
3: सर जी हमारा आंवले का पेड़ है जी।
2: करूँ बात कर रहे हो सर?
3: हम हरियाणा से बोल रहे हैं जी।
2: आंवले में कहीं प्रॉब्लम होता है सर?
3: तो 3 साल का होगा जी, लग रहे नहीं
0: तो आंवले तो अभी 4-5 साल के आंवले होंगे तब लगेंगे इसमें, है ना? तो आंवले की कौन सी किस्म लगाई आपने? चकैया लगाई है, हाथीजू लगाई, कौन सी किस्म?

0: कौन सी किस्म लगाई आपने, चकैया लगाई है, हाथीजू लगाई है, कौन सी किस्म है आपकी?
1: नर्सरी से लाया है ये पौधा।
0: अच्छा, एक ही पौधा है, कोई बात नहीं, आप अभी लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, उसकी देखभाल करो, आमला लग जाएगा आपके।
2: धन्यवाद साहब, फोन कर बताएं, घणों घणों धन्यवाद आपको। राजू भाई, डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, प्राध्यापक कृषि, राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, अपने साथ छह श्रोताओं के साथ बात कर रहे थे। आगे भी कार्यक्रम में बने रहने वाला, पर ई छोटा सा अंतराल के बाद।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420233।
2: सभी श्रोताओं को एक बार फिर से कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत।
6: हेलो,
1: हाँ नमस्कार जी।
6: नमस्कार जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है साहब, क्या नाम है साहब?
1: अभी मैं पूछ रहा था कि कपास है मेरे पास, बीटी कपास।
6: हाँ,
1: फूल उसके
0: हाँ, कपास के अंदर जो फूल है वो आप उसमें नियमित अंतराल से पानी दें। अभी बारिश का समय है, यदि उसमें ज्यादा बारिश है या पानी खड़ा रह जाता है खेत में, तो कुछ फूल गिरने की समस्या हो सकती है। अन्यथा अभी जो फूल आ रहे हैं उसमें बहुत सारे फूल होंगे जो उसमें सेट हो जाएंगे, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें फूल ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो इसमें आप जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है उसको आप प्लेनोफिक्स, जिसको बोल प्लेनोफिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लगभग 5 लीटर में एक ग्राम दवा के रूप में आप छिड़काव कर सकते हैं इसमें। हालांकि कपास में इसकी ऐसी समस्या आती नहीं है, मौसम साफ होगा तो उसके बाद में ये पानी यदि वहां पे खड़ा नहीं रहेगा तो ये फूल गिरने की समस्या उसमें नहीं रहेगी।
1: पानी कभी दिया ही नहीं, उसमें बार बार बारिश होती रही थी, तो 4.5 महीने की
0: होगी
1: मेरी कपास।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो ये बारिश नियमित रूप से हो रही है?
1: हाँ बारिश बढ़ी है सारी।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो आप इसमें इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्लेनोफिक्स दवा का इस्तेमाल कर सकते हो।
2: धन्यवाद सर, फोन कर बताई। राम राम सर।
7: हाँ राम राम बहन जी।
2: राम राम, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत।
7: गुड़ावल नगर से दुर्गाराम दर जी बोल रहा हूँ।
2: जी दुर्गाराम जी, बताओ सर आज का ही पूछ रहे जो।
7: आज तो बहन जी ये बात है कि बारिश कम है, जिस कारण से बाजरा पे पीला बना रहा, जैसे वो फुहारों से सिंचाई की जा रही है तो भी उसको पीला बना रहा है, क्या करें?
0: नहीं, यदि आपके पास में फुहारों से सिंचाई करने जितना पानी है तो आप इसमें थोड़ा यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो अब यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा यूरिया, हाँ यूरिया डाल सकते हैं जिसमें।
7: हो जाएगा कलर?
0: हाँ बिल्कुल हो जाएगा।
7: ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद।
6: हेलो हेलो,
8: हाँ शेखावत साहब नमस्कार।
0: हाँ राम राम जी, नमस्ते जी।
6: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत।
8: मैं गिरीश शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से।
0: हाँ प्रणाम जी,
8: एक ही बात पूछनी कि आंवले का पेड़ है, दी का पहली का आंवला सुखेड़ा बीज के रूप में, तो बने लगाया जा सकते हैं ये बीज में?
0: नहीं, आप बीज आजकल बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ रही है आंवले की, है ना। यदि आपको कोई आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करनी है और आपको ऐसा लग रहा है मुझे देसी आंवला लगाना है तो बात अलग है, नहीं तो अभी चकैया, हाथीजूल बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ रही है, जो लगभग 5 साल की 4-5 साल के उम्र के पौधे अच्छे फल देते हैं, और प्रति पेड़ हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, तो मैं तो आपको
8: नर्सरी से ला के लगाए क्या?
0: अच्छी

0: अच्छी जो अच्छी जो जिसकी पेट हो उस नर्सरी से जो मैं बता रहा हूँ उस किस्म का पौधा लाके लगाओ।
1: तो मेरे पास सर जो पेड़ है ना उसमें मोटे आंवले लगते हैं बढ़िया कागजी से।
0: अच्छा
1: उसका बीज है मेरे पास, वो सुखा दिए थे मैंने थोड़े।
0: तो लगा सकते हैं उसको,
1: तो उसका लगा दे तो लग जाएगा क्या?
0: हाँ आंवले तो लग जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि जो जो अच्छी किस्म के आंवले हैं, अब आप कौन सी किस्म के लाए हो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे जो जो उद्यान विभाग वाले ये कहते हैं कि जो चकैया और ये हाथी रोल वगैरह ये काम में लेवे।
2: धन्यवाद सर, फोन कर बताए, घनो घनो धन्यवाद। राम राम सा।
3: राम राम सर। राम राम सर।
2: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बताओ आपको।
3: हम फैसल तुजारा मोटावर से बोल रहे हैं सर।
2: जी काहे पूछो जी आज?
3: हम ये पूछना चाहते हैं आज फसल खाली होगी सरसों बोना चाहते हैं, इसमें खरपतवार ज्यादा होती है, उसका क्या करें?
0: हाँ सरसों के लिए खरपतवार अब ना उसमें जो आप प्री इमरजेंस जो बुआई से पहले भी खरपतवार नाशी होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें बुआई के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने से पहले क्योंकि ये जो कीटनाशक दवा और फफूंद नाशक दवा में तो जो आप थोड़ी बहुत मात्रा ऊंची नीची होने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खरपतवार नाशी की उचित मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप खरपतवार नाशी जो प्री इमरजेंसी उसको बुआई से पहले और जो पोस्ट इमरजेंसी उसको बुआई के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी दवाई आती है, इमेज अथफर वगैरह, कोई भी जो आप अच्छी जानकारी लेके आपके कृषि विभाग के जो वहाँ पे जो कृषि विभाग के जो सुपरवाइजर है उनकी देख रेख में इसका इस्तेमाल करें।
2: धन्यवाद सर।
4: हेलो
3: हाँ जी नमस्कार सर।
4: राम राम सर, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, कई जानकारी चाह रहे हो सर?
3: हाँ सर, वसंत जी का साहब बिहार जिला क्षेत्र से बोल रहा हूँ साहब मैं
4: जी।
3: तो साहब जी कह रहा हूँ बाकी तो समस्या सब ठीक है, लेकिन बारिश का थोड़ा बताओ ना, मौसम महंगाई नहीं बनेगा, सारी फसलें सफल हो रही।
0: हाँ मौसम का तो आजकल मोबाइल के माध्यम से किसान भाई मौसम की जानकारी ले सकते हैं, तो अगले हफ्ते में अगले हफ्ते में मौसम की कैसी क्या मिजाज रहेगा मौसम का, रेडियो के माध्यम से भी मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आप आजकल तो आपके हाथ में सारी सूचनाएं हैं।
3: तो नहीं साहब क्या है, मेरे पास मोबाइल छोटा है, रेडियो का समाचार आपको प्रोग्राम सुनता हूँ, तो मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि मौसम के बारे में थोड़ा बताया करो ताकि हमारा थोड़ा दिल ठीक रहे कि कैसे होगा नहीं होगा, सिंचाई करना बहुत मुश्किल काम है।
2: बिल्कुल सर, आपकी बात को ध्यान रखे जाओ और कोशिश करे ला आगे से कि मौसम की जानकारी भी आपने देवा। राम राम सर।
4: किसान कॉल सेंटर में हाँ, तो डॉक्टर साहब से बताओ कि हमारे जो गाजर की बुआई करनी है किसानों ने, तो बीज कितों काम मिलेगा?
0: गाजर की बुआई करने के लिए सबसे पहले तो अभी जो किस्म है पूसा केसर उसका इस्तेमाल करें, और ये 6 से 8 किलो बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेंगे, और किसान भाई इसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर बुआई करें तो गाजर की फसल अच्छे से हो सकती है।
2: और नींबू का बारे में भी डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछ ही रहा था भाई, नींबू में जो कैंकर रोग हो जाओ उनको काश्तकार भाई की तरीका से करें?
0: नींबू के कैंकर में आप देख रहे हैं कि इन दिनों बरसात के मौसम में जो नींबू हरे उनमें किसी किसी नींबू के फल के ऊपर आपको खुरदरे खुरदरे धब्बे दिखाई देते हैं, ये सब धब्बे पेड़ के ऊपर भी रहते हैं, पत्तियों के ऊपर, टहनियों पर, और उसके बाद में भी हम उसका ध्यान नहीं रखे तो फल भी आ जाते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहां भी नींबू का बागान है या जिन्होंने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं उसका नियमित रूप से निरीक्षण करें, और ये जो खुरदरे धब्बे हैं वो शुरुआत में इतने नहीं होते हैं, पहले पहले छोटे छोटे हल्के हल्के पीले पीले जो हरित लवक जो धब्बे होते हैं इस प्रकार के धब्बे बनते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम उस पर ध्यान नहीं देते, उपचार नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवाई होती है, ये जीवाणु से होती है, इसमें 250 मिलीग्राम दवाई प्रति लीटर के हिसाब से, मैंने 250 मिलीग्राम 1 लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें।
4: हेलो हेलो स्वागत है।
3: हेलो
4: हाँ राम राम साहब, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है।
3: मैं शीख राम बोल रहा हूँ लोहा से।
4: जी बताओ साहब, कहाँ जानकारी ले पूछ रहे हो?
3: कपास बटवार ज्यादा ले रही,
0: हाँ कपास बढ़वार ज्यादा ले रही, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि लगातार यदि बरसात हो रही है।

0: इसका कारण है बढ़वार तेज होने का। और इसमें जो आप जो जो जो पोषक तत्व तो काम लेते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है, उनका आप जितना उचित मात्रा में उतना ही इस्तेमाल करें। अभी आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो पौधे की बढ़वार बढ़ जाती है। और खासतौर से बरसात का भी एक कारण होता है कि नियमित रूप से लगातार बरसात हो रही है तो भी फसल की बढ़वार ज्यादा हो जाती है।
1: धन्यवाद साहब, फोन करवाता है, खूब खूब धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि अवार का जो टाइम है अभी कमान है, सब्जियां की कौन कौन सी सब्जियां की पौध खरीद जा सके?
0: अभी जो है उसमें फूल गोभी की, पत्ता गोभी की पौध कर सकते हैं। और फूल गोभी की जहां तक बात करें तो पूसा स्नोबॉल, हिसार एक, सिलेक्शन सात, इन किस्मों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और 375 से 400 ग्राम बीज एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। और पत्ता गोभी के लिए पूसा ड्रीम हेड, शंकर हाइब्रिड 10 आदि किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी लगभग 300 से 400 ग्राम बीज चाहिए एक हेक्टेयर क्षेत्र में गोभी लगाने के लिए। इसके अलावा अभी बहुत सारी जो सब्जियां हैं उनको खेतों में रोपण भी कर सकते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्ची, प्याज, इनकी पौध रोपण भी हम कर सकते हैं। इसमें किसान भाई ध्यान रखें कि पौध रोपण से पहले उसका उपचार करें, तो ट्राइकोडर्मा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा 5 लीटर पानी में घोल बना के और पौध को आधा घंटा तक उसमें डुबोकर रखें, और उसके बाद में किसान भाई इन पौध का खेत में रोपण करें तो जड़ में होने वाली बीमारियों से बच पाएंगे और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी।
2: धन्यवाद साहब जानकारी देने के लिए। और साहब देखो, ग्वार की जो फसल है दिन बार के टाइम में झुलसा रोग की आंखी समस्या है, तो झुलसा रोग को प्रबंध की और बार मिले?
0: अभी जो बरसात हो रही है, जिन क्षेत्रों में नियमित रूप से बरसात हो रही है लगातार, जैसे 3-4-5 दिन तक लगातार बरसात हो रही है, तो किसान भाई ने जहां ग्वार लगा रखा है उसमें जीवाणु झुलसा रोग होने का प्रकोप होने का पूरी संभावना है। और इसके लक्षण किसान भाई देख सकते हैं कि पत्तियों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं और धीरे धीरे ये फलियों पर भी आ जाते हैं और तने पर भी आ जाते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें जो कॉपर वाला जो ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के किसान भाई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जो जीवाणु जनित जो बीमारी है झुलसा रोग है उसका उपचार हो सकता है। किसान भाई ध्यान रखें कि जीवाणु जनित बीमारी है उसमें जो फफूंदनाशक दवा में केवल ताम्रयुक्त जो फफूंदनाशक दवा है वही कारगर है, अन्य फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं करें। और या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आती है एंटीबायोटिक होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 400 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं।
2: जी धन्यवाद जानकारी के लिए। और देखो साहब, अबार आपने जो मूंग है, चमड़ा है और जो वो दलहनी जो फसल है वो भी देखो फली अवस्था में है या कोई पकवान जारी है, तो बाक माइन भी फली छेदक कीट को प्रकोप है, तो बिल्कुल नियंत्रण की प्रकार करें?
0: फली कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई को विशेष तरह से ध्यान रखना है कि जहां पे लाइट की व्यवस्था है तो वहां पे वो प्रकाश पास लगाए, और यदि ताकि वो जो फड़के हैं जो वो जो लट के जो प्रोड है वो नष्ट हो सके। और खेत में यदि लट का प्रकोप दिखाई देता है तो क्यूनल फोर्स 100% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भुड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेनोफोस दवाई आती है 25 ईसी, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कीटनाशक दवा है उनका इस्तेमाल यदि आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता है किसान नुकसान हो रहा है तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उसमें प्रकोप बहुत कम है तो हमें कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करने में परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे नीम आधारित भी बहुत सारे कीटनाशक दवाएं हैं, किसान भाई उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान चाहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो जो नीम आधारित बहुत सारे जो हमारे कीटनाशक दवाएं उनका इस्तेमाल भी किसान भाई कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत बढ़िया थी जानकारी बताया। और साहब देखो, लास्ट में देखो अपना जानना चाहूंगा कि जो किसान भाई फसलों जो भी संरक्षण कार्य करे कीट और रोग का, तो बहुत मुख्य सावधानियां कहीं कहीं रखे?
0: सावधानी ये रखनी है कि किसान भाइयों को कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए बहुत बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो ऐसा कीट हमारे कीटों का प्रकोप कम से कम हो, बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो, उन सभी सावधानियों का खेती में इस्तेमाल उनको समावेश करें। और उसके बाद में यदि कीटनाशकों का प्रकोप हो तो हमें जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो पूरा प्रॉपर तरीके से किट पहने, मास्क पहने और अपना है ना, और जो छिड़काव करते वक्त वो बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह नहीं पिए, खाना पीना नहीं करें और साबुन से हाथ धोएं, और उसके बाद में फिर वो है ना, और जो डिब्बे वगैरह जो है इनके कीटनाशक दवाओं का उनका जमीन के अंदर गाड़े, बच्चों के पहुंच में बच्चों की पहुंच तक नहीं रहे।
1: जी वासावा डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत।

0: कृषि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर आदि स्टूडियो में आया और इतनी बेहतर तरीके से जानकारी दिया, समस्या को समाधान किया, इतना ही घणो घणो धन्यवाद। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारो कर रही है कि आज कुछ को कार्यक्रम जो टाइम पूरा होते जा रहे जरा आगे आशा ने चालान करा राम राम सा
1: आशा और राजू ने और करा राम राम सा
0: राम राम सा।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। रात के 8 बजे है। प्रस्तुत है संस्कृत दिवस पर माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशनराव बागड़े का संदेश।
1: नमस्कार, आप सभी को श्रावणी पूर्णिमा, संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध या परिमार्जित। संस्कृत भाषा नहीं, भारत की संस्कृति है। विश्व की प्रचलित भाषाओं में संस्कृत अग्रणी भाषा रही है। हिंदी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं का उद्गम और विकास संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत से देश की दूसरी सभी भाषाओं को अपनी शब्द संपदा से निरंतर संस्कारित किया है। यह श्रावण मास है। श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन को ही प्रतिवर्ष हमारे यहाँ विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन काल में इसी पावन तिथि से गुरुकुलों में वेद अध्ययन और नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होता था। इसे श्रावणी उपाकर्म या ऋषि पर्व भी कहा जाता है। श्रावण और संस्कृत का यह नाता ऐतिहासिक ही नहीं, भारत की संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ा है। श्रावण में वर्षा होती है तो वह माना जाता है कि आकाश से अमृत झर रहा है। यह वह समय होता है कि जब वसुंधरा हरी साड़ी पहनकर 3 दिन तक गौरी के रूप में अनेक परिवारों में 3 दिन तक निवास करते हैं। संस्कृत और श्रावण भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हमारी ज्ञान परंपरा की अद्भुत दृष्टि है। हमारे सभी प्राचीन गौरव ग्रंथ वेद उपनिषद पुराण आदि संस्कृत में ही लिखे गए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि संस्कृत हमारे देश की एक तरह से प्राण भाषा है।

0: यही वो भाषा है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुंधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया है। यही वो भाषा है कि जिसमें अपने नहीं सबके कल्याण सुख की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया गया है। आधुनिक सूचना और संचार विज्ञान के अंतर्गत एक भाषा को वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक उपयोगी माना है। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं पूर्णतया विज्ञान है। सुनने से अनंत तक ज्ञान हमें संस्कृत भाषा से ही प्राप्त हुआ है। राजस्थान में वर्ष 1958 में संस्कृत शिक्षा का पृथक निर्देशालय स्थापित हुआ। गांव गांव में संस्कृत विद्यालय इसीलिए खोले जा रहे हैं कि हमारी यह देववाणी जनवाणी बने। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ज्ञान की जिस भारतीय परंपरा पर विशेष ज्ञान दिया गया है उसका मूल संस्कृत ही है। आइए हम भारतीय संस्कृति से जुड़ी संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए कार्य करें। इसके साथ ही हम वर्षा जल संरक्षण का संकल्प भी ले, पानी का उपयोग सोच समझ कर करें। मैं सदा कहता हूं कि पानी की बचत ही उसका उत्पादन है। इसके साथ ही आप सभी से एक और अनुरोध है कि हम नशा मुक्त राजस्थान के लिए भी संकल्पबद्ध हो। गांव शहरों में मादक पदार्थ के सेवन से बचने की प्रति जागरूकता के फैलने के साथ हमें नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए जवाबदेही रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। समाज नशा मुक्त होगा तभी भारत तेजी से विकसित की ओर अग्रसर हो सकेगा। भारत की नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृत और ज्ञान परंपरा के संस्कृत से जुड़ी है। संस्कृत भाषा हमारी ज्ञान परंपरा की बड़ी स्रोत है, इसलिए इस भाषा से आइए हम जन जन को जोड़े। संस्कृत दिवस की एक बार पुनः प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन की भी सबको मेरी ओर से स्वस्ति कामना है। जय भारत, जय राजस्थान।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत दिवस पर माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़ी का संदेश। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गाना हम आपको सुनाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022233।

0: राखी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी की।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मानापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मानापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। फिल्म का नाम है बेईमान।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय रात के 8:15 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार।
1: कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ।
0: आशा है कि आप सब परिवार के साथ सकुशल और आनंदित हों। इससे पहले हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप हमें अपने सुझाव विचार आपके परामर्श हमें भेज सकते हैं
1: और हमारा फोन नंबर है
2: 9414066730।
1: एक बहन अपने भाई के लिए होती है कीमती उपहार, कभी कभी बच्चों की सी शरारत, कभी कभी माँ का जैसा प्यार। हमारी कामयाबी पर होती है हमसे ज्यादा खुश, पर नाकामयाबी के वक्त समेट लेती है हमारे सारे दुख। उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, बरसाती है अपने भाई पर प्यार, करती है गुमान। हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, पास न होकर भी जिनका प्यार कभी नहीं होता कम। खुशकिस्मत है वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद, खुशकिस्मत है वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद। जिंदगी रहे खुशनुमा बस यही है हम भाइयों की फरियाद। जी हाँ दोस्तों, एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई बहन का रिश्ता एकदम अनोखा होता है, बहुत ही खास होता है, अटूट होता है। बचपन में साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाओं के गवाह होते हैं भाई बहन। देखते ही देखते बहन की शादी का वक्त आ जाता है और बहन शादी करके नए घर चली जाती है, उसका नया घर बस जाता है, पर फिर भी उसका लगाव अपने मायके के लिए कभी भी कम नहीं होता। जी हाँ, उसकी खुशी ही उसके चेहरे पर दिखी जाती है और वापस मायके आना उसके लिए बड़ा आनंद का विषय होता है। मायके आकर वो सबके साथ आनंद करती है, पर भाई और बहन

मिलना, एक और बार फिर से साथ में होना एक अनोखा पल बन जाता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। जी हाँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। सही मायने में देखें तो भाई बहन से अच्छे दोस्त कोई और होते ही नहीं है। बचपन में एक बहन के लिए उसका भाई सबसे प्रिय होता है। उसके साथ ही बहन लड़ती भी है और झगड़ती भी है, खेलती भी है, गुस्सा भी होती है। जी हाँ, आज हम इसी रिश्ते के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है और नोकझोंक वाला भी होता है, और थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सारे रिश्तों में होती है, सारे भाई बहनों में होती है। क्योंकि भाई बहनों के लिए ये कहावत काफी प्रसिद्ध है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल भी बैठा लेते हैं। जी हाँ, यही तो भाई बहन है। भाई बहनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को नकारा नहीं जा सकता, ये सब कुछ ये प्यार में करते हैं। पर दोस्तों, आज मैं इसी रिश्ते की गहराई के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। आज अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि उनके जीवन का सबसे प्यारा समय कौन सा था, कौन सा समय उन्हें हमेशा याद रहेगा, या कौन सा समय ऐसा था जो हमेशा उनके हृदय में रहेगा, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि उनका बचपन। और अगर सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में बात किया जाए तो सब लोगों का जवाब होता है भाई बहन का रिश्ता। जी हाँ, बचपन और बचपन में भाई बहन का रिश्ता हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है। जहाँ एक तरफ भाई बहन का सुपर हीरो होता है और बहन भाई की जान होती है। पर दोस्तों, थोड़ा सा दुख होता है कि आज इस बदलते हुए वक्त में वो प्यार, वो भाई बहन का एक दूसरे से लगाव कहीं खोता जा रहा है। जी हाँ, आज इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, रिश्तों से दूर होता जा रहा है। हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इसी भाई बहन के रिश्ते को देख लीजिए। आज के समय में हमने भाई बहन के रिश्ते की परिभाषा ही बदल डाली है। जी हाँ, आज एक बार सोच के देखिए कि हमारा रिश्ता आज हमारी बहन से या हमारे भाई से कैसा है। क्या वो प्यार जो बचपन में था आज वो है, या वो खो गया है, या वो खोया हुआ प्यार फिर से वापस आ सकता है? जी हाँ, जो भाई बचपन में हमारे लिए पिता के समान था, जो बहन बचपन में हमारे लिए माँ के समान थी, आज भी वो हमारे लिए ऐसे ही है या नहीं, सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, सोचिएगा जरूर। कहते हैं कि कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना, कहते हैं कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना, किसी के चेहरे में मुस्कुराती हुई माँ दिख जाएगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पर अफसोस है कि बड़े होकर भाई बहन बहुत दूर हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने तक को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम सीनू था। उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम मीनू था, वो 4 साल की थी। दोनों भाई बहन घर से थोड़ा सा दूर कंचों के साथ खेल रहे थे। सीनू ने मीनू को थोड़ी देर के बाद कहा कि घर चलते हैं। बड़ा भाई होने की वजह से उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिए। और हुआ क्या कि मीनू, जो कि सिर्फ 4 साल की थी, एक दुकान के पास आकर रुक गई और उसकी नजर एक गुड़िया पे पड़ी। मीनू ने बड़े प्यार से उस गुड़िया की तरफ देखा और वो लगातार उस गुड़िया की तरफ देख रही थी। तभी मीनू का भाई सीनू, उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी और सीनू सीधे दुकानदार के पास चला गया और काउंटर पर जाकर दुकानदार से बोला कि ये गुड़िया कितने की है। दुकानदार ने कहा, पैसे हैं बेटा? और जैसे ही दुकानदार ने इतना कहा,

अपनी जेब से सारे कंचे निकाल दिए और पैसों की नाई उस काउंटर पे उन कंचों को एक एक करके रखने लगा और देने लगा और बोला, अंकल ये लीजिए। और ऐसा कहकर सारे कंचे उस दुकानदार को दे दिए। तब दुकानदार उन कंचों को और उन दोनों भाई बहन को बड़े गौर से देख रहा था। तब दुकानदार सीनू का अपनी बहन के लिए प्रेम देखकर बोला, नहीं बेटा। तब दुकानदार उन कंचों को फिर से गौर से देखने लगा। तब सीनू ने दुकानदार से पूछा, अंकल पैसे कम है क्या? उन दोनों के प्यार को देखकर दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं बेटा, उल्टा ये पैसे ज्यादा हैं। और ये बोलकर तीन चार कंचे रख लिए और बाकी सारे सीनू को लौटा दिए और वो गुड़िया उनको दे दी। और सीनू ने वो गुड़िया अपनी बहन को दे दी। तभी उसकी बहन खुशी से खिल उठी और सीनू अपनी बहन को लेकर घर की ओर चल पड़ा। तभी दुकानदार के यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने दुकानदार से पूछा, मालिक आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतनी महंगी गुड़िया ऐसे ही क्यों दे दी? तब दुकानदार ने ये जवाब दिया, ये गुड़िया मैंने एक भाई और बहन के प्यार को दी है। अभी उस बच्चे को नहीं पता कि पैसा क्या होता है और ये कंचे उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। उससे कीमती उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन कंचों से भी ज्यादा कीमती उस बच्चे के लिए उसकी बहन का प्यार था। इस प्यार की वजह से उसने अपनी कीमती चीज कंचे मुझे दे दिए। तब दुकानदार बोला, रुपये पैसे सब कुछ नहीं होते, इन सब के ऊपर एक और चीज है, वो है प्यार और रिश्ते। और तुमने देखा ना कि उस गुड़िया को जब उसने अपनी बहन को दिया, उसकी बहन के चेहरे की खुशी और उस भाई के आंखों की चमक देखने लायक थी। कहते हैं ना, खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। जिंदगी की हर परेशानी में भाई का साथ होता है। लड़ना झगड़ना और फिर मना लेना, तभी तो रिश्ते में प्यार हो।

जी हाँ दोस्तों, शायद आपको भी आज अपने भाई की, अपनी बहन की याद आ रही होगी। शायद आप जब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको भी अपने भाई का या अपनी बहन का चेहरा आपकी आंखों पे आ रहा होगा। तो देर किस बात की, आज फिर से वापस ले आइए वो प्यार, वो दोस्ती अपने रिश्ते में। पर दोस्तों, आज एक और जरूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ हम अपनी बहन को ही अपनी बहन समझें तो भी गलत है। जी हाँ, अगर हम सिर्फ अपनी बहन को ही बहन समझें तो गलत है। आज के समय में जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, खुश रहे, तो हमें सारी बहनों के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। और वो कैसे होगा? अपने देश की हर बेटी को सम्मान देकर, प्यार देकर, इज्जत देकर। जी हाँ, जैसे हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं, उसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही देश की हर बेटी को अपनी बहन की तरह हमें प्यार करना, इज्जत देनी है। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा है कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, जी हाँ गौर से सुनिएगा कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, उस दिन सोच लेना कि हमारी खुद की बहन भी सुरक्षित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता बहुत निराला होता है, बाकी सारे रिश्तों से बहुत प्यारा होता है। भाई खुद को मुसीबत में फंसाता है, बहन उसको हर मुसीबत से बचाती है। भाई बहन को खूब रुलाता है और बहन भाई को हर बार याद दिलाती है। भाई अगर झूठ बोलता है तो बहन उसका साथ देती है और बदले में कुछ ना कुछ उससे ले लेती है। बहन के चेहरे की उदासी देख भाई उसे हंसाता है, उसकी हर परेशानी का भाई हल ढूंढ ले ही आता है। बहन की आंखों में आंसू देखकर भाई भी चुप हो जाता है। ये भाई बहन का ही प्यार है दोस्तों, जो उनको एक दूसरे के पास खींच ही लाता है।

दोस्तों, इस रक्षाबंधन में मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे भाई बहन एक दूसरे के साथ फिर से उस बचपन को बांटेंगे। जी हाँ, वो प्यार, वो दोस्ती फिर से बांटेंगे। तो सारे भाइयों को उनकी बहनों का प्यार मुबारक हो और सारी बहनों को उनके भाई का प्यार मुबारक हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आप अपने सुझाव, अपने विचार, अपने सवाल या आपके परामर्श लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 9414066730, 9414066730। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों को प्यार दीजिए। याद रखिए, हमारे अपने, हमारे रिश्ते सब चीजों से बढ़कर हैं। तो अब अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे क्रिकेट मुकाबले की, जो परिणाम भारत के पक्ष में नहीं दे सका। हालांकि श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली और ये मैच ड्रॉ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कार्यक्रम में रुक किया जाएगा हॉकी विश्व कप का, जहां आज भारतीय महिला टीम ने पिछले 52 सालों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी को 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में 3-1 से हरा करके। और पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश टूर्नामेंट में अब से कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल में भारत के वीर चोट रानी और वेदनवंत सेंथिल कुमार आमने सामने होने जा रही हैं। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए कोलंबो से, जहां भारत और श्रीलंका के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला आज अंतिम दिन ड्रॉ रहा। फॉलोन खेल में उतरी श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में आज 5वें और अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बना चुकी थी। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने 264 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली और वो अंत तक नाबाद होकर पवेलियन लौटे। और उन्होंने कह भी सकते हैं कि आज अंतिम दिन श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज यानी टेल एंडर्स के साथ टीम को हारने से बचाया और एक ड्रॉ मुकाबला देने में मदद की। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने 9 विकेट खोकर 503 रन बनाए थे और अपनी पारी घोषित कर दी थी। इस मैच पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, उम्मीद थी हम लगातार दूसरे तीसरे दिन के बाद से जिस तरह भारत ने पूरी श्रृंखला में खेल दिखाया, भारतीय टीम हमेशा हर मोर्चे पे फ्रंट फुट पे दिखी, डोमिनेट कर रही थी। आज भी हमें आखिरी समय तक उम्मीद थी कि शायद अब श्रीलंका ऑल आउट होगी और भारत इस स्कोर को चेस करेगी, और जिस 1-0 से भारत को संतोष करना पड़ा वो 2-0 हो सकता था, लेकिन 5वें दिन के खेल में क्या क्या बीता।
1: बिल्कुल शक्ति, आज भारत की जो सीरीज 1-0 पे खत्म हुई है वो 2-0 पर भी खत्म हो सकती थी, लेकिन अगर आज के खेल की बात करें, आज के खेल की

0: पूरे मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका के नाम रहा है। भारत मुकाबले की शुरुआत में हावी नजर आई थी क्योंकि 500 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो श्रीलंका के ऊपर था, जिसके चलते वो 290 रन पर सिमट भी गए थे। लेकिन जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोनल दिनुशा ने अपनी बैटिंग एक्सीलेंस दिखाते हुए 133 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही केशारा नुवांथा और के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी करी और उसके बाद प्रभात जयसूर्या, लहरू कुमारा, असिता फर्नांडो के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हुए मुकाबले को ड्रॉ की ओर पहुंचा दिया। वहीं पसिंदू सूर्या बंदारा ने 92 और कमिंदू मेंडिस ने 55 रन का योगदान टीम की झोली में किया।
1: जी बिल्कुल, और क्रिकेट में कहते हैं कि पार्टनरशिप्स बिल्ड द मैच। आज हमने देखा कि किस तरह साझेदारियों ने इस मुकाबले को बनाया नहीं लेकिन मुकाबले को बचाया, और यही शायद टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है जिसको हम देखना चाहते हैं। आखिरी दिन तक मैच गया और शायद श्रीलंका ने आखिरकार मेजबान टीम ने परिणाम को काफी हद तक कह सकते हैं भले जीतना हासिल की हो लेकिन अपने पक्ष में रखने का काम किया। एक खिलाड़ी जो लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की तरफ से सुर्खियों में रहा, दिनुशा, सोनल दिनुशा, जिन्होंने आज भी शतकीय पारी खेली, पहली पारी में भी शतक लगाया था। किस तरह से इस पूरे खिलाड़ी को देखा जाए श्रीलंका की तरफ से?
0: सोनल दिनुशा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज बनके उभरे हैं श्रीलंका के लिए। उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 3 शतक लगाए हैं और 420 रन बनाए हैं। इसके साथ ही साथ वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए। टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात है। और वहीं जहां आपने साझेदारी की बात करी तो उन्होंने केशारा नुवांथा और उनके साथ शतकीय साझेदारी, प्रभात जयसूर्या और लहरू कुमारा, इन सभी के साथ साझेदारी तो करी ही, साथ ही साथ 538 गेंदें, लगभग 90 ओवर का खेल जो है इन लोगों ने खेला और आज का पूरा दिन जो है अपनी तरफ करते हुए मुकाबले को ड्रॉ कराया।
1: जी बिल्कुल, हालांकि सीरीज भारत के पक्ष में रही है तो भारत के दृष्टिकोण की भी बात की जाए, भारत के लिए क्योंकि अहम सीरीज थी, WTC की टेबल में हम लगातार एक अच्छा होल्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा स्थान पाने की, भारत के लिए क्या सकारात्मक पहलू इस श्रृंखला से निकल करके आए?
0: भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि 2023 के बाद पहली अवे सीरीज जो है वो भारत ने अपने नाम करी है। अगर हम आखिरी 5 सीरीज की बात करें तो ये तीसरी श्रृंखला भारत ने जीती है और एक ड्रॉ कराई है, एक हारी है। हार का सामना भारत को करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब 2-0 से हार मिली थी, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर था और इस सीरीज के बाद से WTC की ओर थोड़े पॉजिटिव्स नजर आएंगे भारतीय टीम को। हालांकि अभी वो 51.52% अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है और 11 मुकाबलों में 5 जीत और 4 हार, 2 ड्रॉ के साथ अभी बने हुए हैं। लेकिन अब जो 7 मुकाबले बचे हैं उनमें से कम 6 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, नहीं तो इससे कम में भारत के लिए WTC फाइनल के दरवाजे जो है बंद होते नजर हमको आएंगे।
1: ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाली राह जो है और चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि भारत अब अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो वापस 19 नवंबर को भारतीय टीम देखने को मिलेगी वेलिंगटन में, जहां न्यूजीलैंड में सीरीज खेलनी है, वो भी आपको विदेश में जाके खेलनी है, तो सेना कंट्री का दबाव वाकई अपने आप में कुछ अलग होता है। और अगर आज के मैच की बात वापस कर ली जाए तो मैन ऑफ द मैच, जैसा कि हमने बताया कि दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा को चुना गया जबकि भारत के देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विशेष बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, देवदत्त पडिक्कल इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जो कि पहले मैच में शतक आया है, इस मैच में भी शतक था और शायद लोगों को याद नहीं होगा जो प्रैक्टिस मैच खेला गया दोनों टीमों के बीच में उनमें भी इस खिलाड़ी ने शतक लगाया है, तो एक अच्छा भारत को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मिला है।
0: जी शक्ति, भारत के सामने 3 नंबर के बल्लेबाज की समस्या जो है टेस्ट क्रिकेट में काफी समय से बनी हुई थी लेकिन इन 2 टेस्ट मैच की 3 पारियों में देवदत्त पडिक्कल ने 328 रन बनाकर उसको लगभग समाप्त करने का कार्य किया है।
1: जी बिल्कुल, और अब इसके बाद रुख किया जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट का, जहां पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे अनवीर सहवाग और भारत के कप्तान और मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अनवे ड्रेविड को ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य राय चंदानी को टीम की कमान सौंपी गई है जबकि मध्य प्रदेश के बल्लेबाज यशवर्धन चौहान उपकप्तान होंगे। ये मुकाबले राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे, तो कहा जा सकता है कि झलक देखने को मिली सहवाग की। अगर बात की जाए अरविंद सहवाग की और द्रविड़ की, शायद कहीं ना कहीं वंश नजर आता है जब मैदान पर उतरते हैं खिलाड़ी।
0: जी बिल्कुल, अनवय द्रविड़ और आरवीर सहवाग दोनों ही मतलब जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर अनवय द्रविड़ की हम बात करें तो पिछले साल जो है उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था विनोद मनकर ट्रॉफी में और आरवीर सहवाग अभी DPL खेल रहे हैं और अंडर-19 में दिल्ली के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अच्छा पूल जो है वो हर मोर्चे से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यक्रम में बात की जाए युवा इंडिया संवाद की।

0: देशभर में आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है।
2: खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में आज देश भर के युवा खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को लेकर एक साथ एक मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर मैदान पर पसीना बहाने की अपील की।
1: देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है।
2: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे आयोजनों में ऐसे खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए जिसमें देश अब तक हिस्सा नहीं लेता है।
1: ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती, यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी एक मौका है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संध्या साइकिल जैसे पहलों तक आपने फिटनेस को, लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है।
2: कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों में लोग वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचार भी रखे।
4: संवाद के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिनेफ से कहा कि स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए। उन्होंने यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करने का मैसेज दिया।
5: आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने भाषण सुना, उसके लिए जो विजन है उनका बहुत ही अच्छा रहा है। वो जो चाहते हैं कि 2036 में जो ओलंपिक से उसमें जिससे ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में से पार्टिसिपेट करें।
6: आज का खेलो इंडिया संवाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। वो यूथ नु हमेशा डेडिकेशन दे नाल हमेशा मोटिवेट करने लिए रहंदे ने कि असी हाडा यूथ देश लिए अगे वधे ते हमेशा देश लिए काम करे।
7: आई एम अ एनटीपी साइक्लिस्ट एंड एशियन मेडलिस्ट। सो टुडे वी हैड अ कन्वर्सेशन विद पीएम अबाउट स्पोर्ट्स। सो आई एम रियली हैप्पी हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस स्पोर्ट्स एंड फंड्स एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस।
2: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम तस्वीर है नए भारत की, जहां युवाओं का हुनर प्रतिभा से पदक तक का सफर तय कर रहा है और पोडियम पर लहराता तिरंगा खेलों की दुनिया में सरकार से सहयोग, खिलाड़ियों की मेहनत, खेल व्यवस्था में होते बदलावों की कहानी बयां कर रहा है।
1: खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, और ये जज्बा हमारे भीतर लाता है।
0: तो कितना कुछ है इस दुनिया में जो खेल हमें सिखाते हैं, और खेल ही अगर गिराते हैं तो खेल ही हमें मनाते हैं। प्रधानमंत्री के ये शब्द कि जो खेलेगा वो खेलेगा, शायद कहीं ना कहीं वो विकसित भारत का लक्ष्य और वो तमाम सपने जो 2030, 32, 36 के लिए भारत ने देखे हैं उनकी दिशा में

भारत के बढ़ते हुए ये कदम। अब रुख करते हैं हॉकी विश्व कप का, जहां भारतीय महिला टीम ने आज पांचवें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडेम में खेले गए मुकाबले में भारत के लिए इशिका ने 43वें और नवनीत कौर ने 44वें तथा 47वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्लिंग्स ने 59वें मिनट में किया, एकदम मैच के अंतिम क्षणों में। ये भारतीय महिला हॉकी टीम का पिछले 52 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले भारत ने 1974 में चौथा स्थान हासिल किया था विश्व कप में। इस साल भारतीय टीम ने एक बेहतरीन खेल दिखाया, हालांकि थोड़ी सी दुर्भाग्यवश रही, अगर टीम आखिरी मैच ड्रॉ नहीं होता तो शायद आज सेमीफाइनल में भारतीय टीम होती। अब कल भारतीय पुरुष टीम 7वें स्थान के लिए बेल्जियम से खेलेगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ

सकने लगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ विश्व कप अभियान समाप्त करने पर होगी। अब रुक करते हैं स्क्वाश का, जहां हंगरी में पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन में सेमीफाइनल में आज भारत के वीर चोटरानी और वेलनवल सेंथिल कुमार आमने सामने होंगे। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अलशेरबिनी को 3-1 से हराया था। वहीं वेलनवल सेंथिल कुमार ने विश्व के 18वें नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के एनयूएनजी को 11-2, 11-9, 11-8 यानी कि 3-0 से हराते हुए एक बड़ा उलटफेर किया था और अंतिम चार में जगह बनाई थी। शतरंज में अगर नजर डाली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा शतरंज ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में दूसरी बाजी में अमेरिका के फाबियानो करवाना के साथ ड्रॉ खेलकर सेमीफाइनल में वापसी करने से चूक गए हैं, क्योंकि उनको पहले बाजी में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी नजर होगी कि अब वो किस तरीके से ब्लेड्स एंड रैपिड राउंड में जीत हासिल करके वापस फाइनल में बढ़त बनाएं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज उसके यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू में पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-7-9-8-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों

0: से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में केंद्र से आपदा आया, चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: डिस्कशन आर एक्सपेक्टेड। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोल जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
5: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण

0: और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
1: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
2: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी होगी। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारी न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
4: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
5: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर

0: 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने एक और नवनीत कौर ने दो गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

विविध भारती से आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं।

0: 请查查
1: बोली बोली दुनिया सारी।

0: 谈谈。
1: 那鬼咋听？那鬼在里面？

तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा है शुक्र।

0: शैलेंद्र का लिखा गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म जानवर से दर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ?

चरस। इस फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र।

0: सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। 10वीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

0: मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।
1: दिल जलता है तो जल

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं। और इन तमाम फिल्मों में मुकेश

इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

0: सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।
1: अमान दे में प्यार की गया।

1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नायन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं, उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुनगुना।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज है, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसुरी का महजिनल है। रात्रि के 10 बजे है, पेश नजर है फिल्म संगीत।

कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं। मुझे सताने के तरीके तुम्हें बेहिसाब आते हैं। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। और सुनते हैं मुन्ना दे की आवाज में वक्त फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुथियानवी ने और संगीत रवि का है। होठों पर नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, जमाने से हमें क्या लेना, जब तुझमें बसी है जान मेरी।

आपने मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं शकील बदायूनी का लिखा गीत नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी की आवाज में मेरा महबूब फिल्म से। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में उस फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में धड़कती फिल्म का नगमा। नगमा नगर है हसरत जयपुरी और मौसीकी शंकर अजय किशन की है। कुछ इस तरह से समाये हो मेरी सांसों में कि अब तो धड़कन भी तुम्हारी याद दिलाती है।

0: आपने मधुफी की आवाज में धरती फिल्म का गीत सुना। अब सुनते हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जी किशन के संगीत निर्देशन में कन्यादान फिल्म से, आवाज मधुफी की है। ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब में हो, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो बस तुम मेरे करीब हो।
1: सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। नमन गान है अरुण बख्शी और मौसी की कल्याण जी आनंद जी की है। जो दिल के करीब होते हैं वो कभी दूर नहीं होते, उनकी यादें हमेशा

अभी अपनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आधारित फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश लव इन टोक्यो फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल हसरत जयपुरी के हैं और घनशंकर जयकिशन की है। तेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का सांस है, तुम मेरी मोहब्बत नहीं मेरी पूरी कायनात है।

लव इन टोक्यो सन का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। मेरे हमदम मेरे दोस्त आई संतेंस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है नजरुल सुल्तानपुरी में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सब तुझे चाहते होंगे तेरा साथ पाने के लिए, मैं बस तुझे चाहती हूं तेरा साथ देने के लिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त इस सॉन्ग का गीत भी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हर्षद जयपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर अनोखी अदा फिल्म से। न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तुम मिले मेरी बस यही ख्वाहिश।

की आवाज फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आमने सामने फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पल को भी सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहे पर अपने तो अपने होते हैं।

सामने स्वयं का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं अगली पेशकश हाथ की सफल फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, बोल गुलशन बावरा के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की है। काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, मैं पकड़ू हाथ आपका और कहूं बस तेरा साथ चाहिए।

आपकी सफल स्वयं का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश काला पत्थर फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, बोल साहिर के हैं और फिल्म राजेश रोशन की है। अच्छा लगता है रात तेरे ख्यालों में खो जाना, जैसे दूर होकर भी तेरी बाहों में खो जाना।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में काला पत्थर फिल्म का गीत सुना। जिंदगी हंसी में खुल के जी कर तो देखिए, बरसों से लगी इस धूल को हटा कर तो देखिए। इसी के साथ फिल्म संगीत अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी 5 बजे के मोहन चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से।

0: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801-03261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसड़ा का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं।

प्लांट की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।